0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: आइए आइए भाई, कैसे स्वागत करें आपका आज के इस खास खास कार्यक्रम में कि भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, ऐसा मेरी माँ गाया करती थी व्हाइल वी यूज्ड टू टाई राखी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s बिग स्टेप। यस, ये शो हो चुका है शुरू, और क्योंकि कल राखी का दिन है और अगर जस्ट इन केस आप ऑन कोर सुन रहे हो तो शनिवार हो चुका है और हम जस्ट अभी ये जो शुक्रवार को राखी का टाइम गया है तो हम उसकी यहाँ पे आज मतलब माहौल फेस्टिवल के हिसाब से बनना चाहिए ना। अब क्या करें जब इतनी सारी बातें होती है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मस्ती 90s मिक्स टेप मेमोरीज के और यादों के वो दरवाजे यूं ही खुल जाया करते हैं एंड यूं ही फर्राटे से बाहर आते हैं कि ओहो ऐसा ही हुआ करता था। नहीं, सो वेल आज के मस्ती 90s मिक्स टेप में भी कुछ रक्षाबंधन का ही फ्लेवर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि राखी बांधते वक्त जो है उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि गाने वाने चला दो, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा वाइब बनाओ, माहौल बनाओ। भाई माहौल जो है फेस्टिवल्स के टाइम पर 90s में कई दिनों पहले से ही बनना शुरू हो जाता था, बी इट लाइक राखी ओनली जो कि हमें पहले से ही खरीद, आजकल कभी कभी ना डेट मिस हो जाती है और इस बार जो है राखी थोड़ी सी जो है मेल में पहुंचेगी जरूर लेकिन थोड़ी लेट पहुंचेगी। क्या बट क्या दिन थे वो यार, लाइक सच्ची में नॉट ओनली आई क्रेव फॉर द फेस्टिविटीज अराउंड द हाउस 90s के टाइम पर बट ऑल्सो द पकवान विच यूज टू यू नो कम अलॉन्ग विद इट। और हम लोग वेट क्या करते थे बिकॉज इट जस्ट मेड एंड एलिवेटेड द होल थिंग सो वेरी मच। आजकल क्या है कि भाई तू बता क्या खाएगी, अभी तेरे लिए ऑर्डर, या कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। तब भी था बट आई थिंक उस टाइम पे वैल्यू इस चीज़ की ज़्यादा थी क्योंकि बहुत कम मिला करता था, बट कम में बहुत सारा खुशी का एहसास हो वो है वो 90s वाले दिन। सो वेल शुरू तो यहाँ पर हो चुका है, आप बिल्कुल पेटियाँ बांध ले, 90s के सफर में चलते हैं साथ साथ और मस्ती 90s मिक्सटेप में हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। मैं हूँ आपकी 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ। और आज जो है मस्ती 90s मिक्स टेप यहाँ पर शुरू करते ही मेरे को आया था कि यार राखी के बारे में तो बात करने लाइक नॉट द मैं राखी सावंत हूँ, नो नो, ना ही मेरे करण जुड़ाएंगे धरती का सीना पहन, नो नॉट दैट वन एज वेल। दिस इज द रक्षाबंधन और वो जो त्योहार एंड द त्योहार की फीलिंग। अच्छा 90s वालों ये बताओ, आज राखी कोरियर करनी हो तो ट्रैकिंग लिंक खोलो, डिस्पैच दिखा रहा है कि नहीं, इन ट्रांजिट है, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड, लाइक ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। But now let's go to the 90s का time, right? राखी ऑनवलप में डाली और उसके बाद उसको पोस्ट करना पड़ता था। उसके बाद स्टेटस था भगवान भरोसे। सीरियसली, अगर भाई बहन या कजन्स दूसरे शहर में रहते थे तो रक्षाबंधन की प्रिपरेशन काफी पहले से ही स्टार्ट हो जाती थी। मम्मी जो है, मैंने बताया ना, एक बड़ा सा कैलेंडर जो है वो बड़े बड़े पन्नों वाला, उस पर हर चीज लिखी होती थी एंड इट यूज टू बी इन आर डाइनिंग रूम, जहां पर यूजली सब खाना खाने के लिए बैठते थे। वाई? बिकॉज नजर सीधा उसमें पड़े तो समझ में आ जाए कि भाई ये वाला त्योहार आने वाला है। फिर उसके बाद यू नो, राखी के लिए मार्केट जाओ, वहां पे राखी चूज करो और साथ में वो 90s वाला एक ग्रीटिंग कार्ड। पहले उसमें ना फ्रंट में बहुत सारे फ्लावर्स बने होते थे या क्यूट सा टेडी बना होता था और शाइनी गोल्डन लेटर्स में लिखा होता था फॉर माई डियर ब्रदर, एंड अंदर प्रिंटेड होता था इमोशनल लाइन्स जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब वो देखता भी नहीं था उसकी तरफ। फिर उसके बाद ऑफकोर्स हैंड राइटिंग में अपने लिखना पड़ता था लॉट्स ऑफ लव, या फिर डेट, फिर नाम, और कभी एक छोटा सा स्माइली जो बिल्कुल स्माइली जैसा नहीं दिखता था। फिर राखी को केयरफुली कार्ड के अंदर उसको रखना, उसके बाद अगर तो बाहर भेज रहे हो तो एनवेलप में डालना, एड्रेस लिखना, एंड ये सारी चीजें हमारे जो पिताजी हैं वो पूरा ही अपने कहते कहते सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में जाकर अगर आपको ये अपना राखी भिजवाना भी है देन यू शुड नो हाउ टू डू इट। सो आई टू सेंड इट टू माई बुआ के बेटे एंड बाकी जितने भी मेरे कजन्स हैं सबको मैं भेजा करती थी। सो वेल, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो सीखी। और पिन कोड कन्फर्म करने के लिए घर में तीन लोगों से पूछना ज़रूर कि ये यही वाला है ना, है ना, यही वाला है ना, स्टैम्प किधर लगेगा, इधर लगेगा, उधर लगेगा। ऑनवलप जो है पोस्ट होता था उसके बाद शुरू होता था असली सस्पेंस कि एसटीडी करके पहले तो इन्फॉर्म इतला कर दिया जाता था कि भाई आएगी, उधर भी इंतज़ार चलता था कि भाई उसकी तो मतलब अभी तक इसकी राखी नहीं आई। और फिर उसके बाद जैसे ही मिल जाती थी तो कॉन्फर्मेशन कॉल लैंडलाइन पे ही आता था कि भाई राखी मिल गई। हमको लगता था वाह ये क्या मैजिक है, हमने इधर से भेजा वहाँ पे उनको मिल गया, ये तो बहुत ही कूल हो गई बात। 90s का कूल भी कुछ इसी तरह सा था। सो वो सेंटेंस ही हमारा डिलीवरी नोटिफिकेशन था कि मिल गई राखी, और अगर नहीं पहुँची तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने कहा था कि इसको जल्दी भेज दिया करो, तुम लोग कोई लास्ट मिनट में कर, आजकल तो कितना कूल है यार, सेम डे डिलीवरी, देन डिजिटल शगुन जो है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, वीडियो कॉल से आप कनेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग इज फास्टर, इजियर एंड ट्रैकेबल, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ओके, लेकिन वो हैंड रिटन एनवेलप वो एक अजीब सी ही वार्मथ थी। ये जो खुद जाते थे हम लोग राखियां चूज करते थे, घर में माहौल के साथ राखी जो बांधी जाती थी, टीका लगाया जाता था एंड ऑल दोस थिंग्स, उसकी बात ही कुछ और थी। नहीं, 90s के वो अमेजिंग दिन, जी हाँ, आज राखी का दिन याद कर रहे हैं।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वो बात कर रहे थे ना कि रक्षाबंधन में ऑनवलप हम लोग पोस्ट करते थे एंड सारा का सारा प्रोसेस हमें उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन इसी तरह से हमारे पेरेंट्स जो है हमको सिखाया करते थे कि सब कुछ आना चाहिए। बाय द वे, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ 90s वाली। अब मान लीजिए आपके नाम का ऑनवलप आया है, ठीक है, उसमें से राखी निकली, ग्रीटिंग कार्ड निकला और कार्ड खोलते ही अंदर से करके कुछ नीचे गिरा। वो क्या था? 11 रुपए का नोट या फिर 21 रुपए का नोट। उस टाइम पे इतना ही बहुत था, 51 होता था तो लोग सोचते थे कि भाई बहुत ही ज्यादा ही कर दिया तुमने, और 101 तो मतलब गजब ही कर दिया, करोड़पति समझ लो अपने आप को। सो इस तरह की चीजें हुआ ही करती थी और आप स्टैंडर्ड जो है उस हिसाब से सेट कर लिया करते थे। बस 90s के बच्चों के लिए ये कोई रैंडम अमाउंट नहीं था, दिस वॉज अ सीरियस वेल्थ। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जैसे शगुन का अमाउंट का अपना ही चार्म था। राउंड फिगर नहीं, 1 रुपया एक्स्ट्रा। वो वाले ऑनवलप याद है जिसमें बाहर जो है 1 रुपए का सिक्का ऑलरेडी चिपका हुआ आता था, बस बाकी का नोट जो है वो अंदर ही रखना है। हम बच्चों को फिलोसफी से क्या लेना देना, हमें तो पैसा चाहिए। जब ऐसे आते थे नोट यार, मम्मी पहले तो ले जाया करती थी, फिर थोड़े बड़े हुए तो उनको हम पे दया आ गई कि नहीं दे ही दो यार, मतलब पॉकेट मनी क्या बार बार

हम देंगे, यही समझ लो तुम्हारी पॉकेट मनी है। एंड देन वी यूज्ड टू इमेजिन कि इसमें क्या क्या आ सकता है, 10 रुपए में टॉफीज कितनी आ जाएगी, कॉमिक्स आ जाएगी, चिप्स आ जाएंगे, ऑरेंज बार आ जाएगा, ये सब सेव करके नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे सेव रखने कहाँ है, वॉलेट तो था नहीं, तो कभी पेंसिल बॉक्स के सीक्रेट कंपार्टमेंट में, कभी कबर्ड के अंदर, कभी अपने गुल्लक में, कभी किसी बुक के पेजेस के बीच में, और फिर खुद ही भूल गए कि रखे कहाँ, अचानक से फिर सरप्राइज विजिट मिलता था खोल के, ओ अच्छा आज तो हम रिच हो गए। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक और सीन होता था, आपको शगुन मिला, आप क्वाइटली काउंट कर रहे हो और मम्मी की नजर पड़ गई कि कितने मिले, बस अब सडनली फाइनेंशियल प्राइवेसी इज अंडर थ्रेट, कुछ नहीं बस 21 इधर दो मैं संभाल के रख देती हूँ। नहीं, 90s के बच्चों को सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस की मम्मी संभाल के रखेंगी का एक्चुअल मैच्योरिटी डेट ये कब है, अगर बता देती तो बात ही क्या थी। और कजन्स के बीच कंपैरिजन भी काफी सटल बिल्कुल नहीं था, तुझे कितने मिले, मुझे 51, व्हाट तो मुझे किस क्यों मिले, बट फनी ना अमाउंट कितना छोटा था फिर भी एक्साइटमेंट कितनी बड़ी, बिकॉज अपने पैसे होने का फीलिंग ही डिफरेंट था यार। आज एक टैप पे मनी ट्रांसफर हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, अमाउंट जो है अकाउंट में आ जाता है, कन्वीनियंट एब्सोल्युटली। लेकिन वो एनवेलप खोलना, नोट का कॉर्नर देखना, उसे निकालना, सीधा करना, तुरंत फ्यूचर प्लानिंग शुरू करना, दैट वॉज अ लिटिल रक्षाबंधन जैकपॉट। 90s में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं था बॉस, 21 रुपए थे और सपने अनलिमिटेड। स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Aamir Khan wondered.
2: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome.
5: You're very good, yaar. Very well done.
1: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
10: आइए, आपका इंतजार था रेडियो मस्ती 24/7। यस, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ यहां पर। एंड यस, रक्षाबंधन की बात हो रही है, बिकॉज यार फेस्टिवल के टाइम पे 90s वाली मेमोरीज उस फेस्टिवल को लेकर नहीं ताजा करे तो कैसे कैसे बिल्कुल बनता है। सो 90s में रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ सुबह राखी बांधी, मिठाई खाई एंड डन बिल्कुल भी नहीं था बॉस। अगर आपके कजिन्स सेम सिटी में रहते थे तो राखी का दिन बेसिकली एक फुल फैमिली टूर पैकेज के साथ आता था कि सुबह जो है घर वालों ने अनाउंसमेंट की कि जल्दी रेडी हो जाओ, तीन जगह जाना है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली हमको जाना है अपने कजन्स को बांधने, मम्मी के भी जो मुंह बोले भाई हैं और जिनको वो मानती हैं तो उनको भी उन घरों पे जाकर जो है अपनी राखियां बांधनी है। तीन, और वो तीन जो है शाम तक जो है, पांच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पर, बट हमारे दिल में जगह इतनी थी कि हम चले। तो मैं कह रही हूं ना कि 90s में त्योहार वॉज सम अलग, एंड दैट इज वाई यूज टू वेट फॉर दीज फेस्टिवल्स, राइट? सो सबसे पहले जो है नानी या दादी के घर, वहाँ पे कजन्स ऑलरेडी आपको रेडी मिल जाया करते थे, फिर राखी, फिर तिलक, फिर मिठाई, फिर शगुन, बहुत सारी मस्ती, और जैसे ही बच्चों ने प्रॉपरली खेलना स्टार्ट किया नहीं, वहीं पे मम्मी पापा ने बोला चलो चलो लेट हो रहा है, अभी अगले घर जाना है। एंड वी यूज्ड टू बी लाइक मम्मी प्लीज थोड़ी देर और यार, थोड़ी देर और। फिर सब कोई अपने स्कूटर पे, हमारे उस टाइम पर जो है यसदी थी डैड के पास, तो उस पे बैठ कर जो है टंकी पे बैठ कर जाते थे वहाँ पे, एंड एक बच्चा मम्मी पापा के बीच में पीछे की तरफ बैठ करता था, एंड एक एडजस्टमेंट जो है वो चलती रहती थी, वो कानपुर में इतने गड्ढे थे रोड में, वो ऐसे ही एडजस्ट हो जाया करते थे, दे यूज टू काइंड ऑफ हेल्प अस। सो 90s फैमिली लॉजिस्टिक्स को एब्सोल्यूटली मैं तो सल्यूट करना चाहती हूँ। या फिर अगर आप मारुति 800 के टाइम को याद करो तो उसमें पूरा खानदान आप उसमें भर सकते थे, खानदान। आई हैव सीन मारुति 800 स्टफ्ड विद आई डोंट नो मोर देन 15 पीपल एट वन पॉइंट. सो बट एनीवेज, राखी की थाली, मिठाई का डब्बा, गिफ्ट का पैकेट, और पीछे हम कजिन्स को लेकर डिस्कशन की आप किसके घर जाना है. पहले बुआ के यहाँ पे, नहीं वो लंच के बाद घर पर मिलेंगी. हर घर पहुँचते, अरे आ गए, आओ आओ आओ आओ. फिर और उस टाइम पे क्या था, आवाज़ लगा के एक दूसरे को बुलाया जाता है, अरे सुन रहे हो, आ गए हैं ये लोग. फिर वही रिचुअल, लेकिन घर घर का एक अलग फ्लेवर हुआ करता था और अलग खाना भी. कहीं समोसे रेडी होते थे, कहीं पूरी सब्जी खाने को मिलती थी, कहीं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कहीं मिठाई, और कहीं पे कुछ भी नहीं, नट्स देकर हमको बाय बाय टाटा कर दिया करते थे. एंड मतलब एक पॉइंट ऐसा आता था कि मम्मी जब बोलती थी कि बस थोड़ा सा ही लाना, अभी और भी आगे दूसरे घर जाना है ना, तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. एंड यस, 5 मिनट्स लेटर वी आर स्टिल सेवरिंग एंड रिलिशिंग दैट गुलाब जामुन विच केम, बिकॉज ये खाना कौन छोड़ता है यार, कौन छोड़ता है बताओ, हम तो नहीं छोड़ते थे. सो राखी वॉज वन ऑफ दोज डेज वेन कजन्स होम यू डिडंट इवन मीट हर हफ्ता. सब एक एक करके मिल जाते थे, किसी के घर लूडो खेलने चले गए, किसी के छत पे चले गए खेलने के लिए, कहीं पुराने टॉयज मिल गए, और हर जगह निकलते वक्त कि भाई नेक्स्ट टाइम, अगली बार थोड़ा और समय लेके आना, देन अगेन ऑफ टू नेक्स्ट स्टॉप. आज फैमिली डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्केड्यूल्स में है. वीडियो कॉल पर राखी भी काफ़ी अच्छी लगती है, इट्स ओके. कुरियर से गिफ्ट्स भी बहुत जाते हैं, बट 90s के वो राखी के राउंड्स, स्कूटर की राइड्स, मिठाई के डब्बे में, यू नो, बहुत ही यम है, मुंह में पानी आ रहा सोचे, देन मम्मी का जल्दी करो जल्दी करो, और एक ही दिन में आधी फैमिली से मिल लेना, उसकी थकान भी एक मेमोरी ही तो है और उसकी खुशी भी. रात को घर लौटते जब हम थे टोटली एग्जॉस्टेड, बट या पॉकेट में थोड़ा शगुन, पेट में दुनिया भर का खाना और हाथ में राखियां, पूरा खानदान यू ही सिमट के एक दिन में आ जाता था. Stay tuned to Radio Masti 24/7, Masti 90s mixtape, आप सुन रहे हो अल्ट्रा के साथ.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: तेरे को बहुत मजा आता है ना सीधा साधा लोगों को फूल करने में?
2: तू भी तो उसको फूल करती है, लव मेरे को करती है और घूमने को उसके साथ जाती।
1: Oh shut up! एक दिन गॉड तुमको बहुत पनिश करेगा। क्या हुआ?
2: You are right. चींटी बनकर काटा। Chewing. Punishment over. ए, अभी चलना, काय को इतना भाव खाती है? हाँ, लव यू यार।
1: तू ऐसा कितनी लड़कियों को बोला?
2: हाँ, सिर्फ तेरे को सैंड्रा। I mean, सुजी। सिर्फ तेरे को रोजान।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: यार राखी के टाइम पर 90s में रक्षाबंधन में शॉपिंग करने जाना भी फेस्टिवल का ही पार्ट माना जाता था, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा मस्ती 90s मिक्स डे। आज रक्षाबंधन की वो जो दिन है 90s वाले उसको याद कर रहे हैं हमको। सो आज क्या होता है, फोन खोलो, स्क्रोल करो, यू कैन फिल्टर इट बाय प्राइस, यू कैन फिल्टर इट बाय कलर, यू कैन ऐड टू कार्ट एंड इट इज डन। तब पहले बोला जाता था चलो भाई आज मैं जल्दी आ जाऊंगी ऑफिस से, फिर राखी लेने मार्केट जाएंगे। ये जो सिंपल लाइन होती थी ना कि आज तो मार्केट चलेंगे, एक्साइटमेंट ना हमारी 90s में इसी में आ जाया करती थी। मार्केट पहुंचते ही दुकान के बाहर से ही पता चल जाता था कि राखी का सीजन ऑन है, क्योंकि सामने लगे होते थे वो बड़े बड़े कार्डबोर्ड के डिस्प्ले बोर्ड्स। और दुकानें क्या करती थी कि अपना दुकान एक्सटेंड कर लिया करती थी, बाहर जो है लकड़ी के टेबल्स लगा लगा के जोड़कर उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का शीट बिछाते थे और उसके ऊपर वो लोग सारा राखी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राखियां जो है सजा के रखते थे, ताकि लोगों की मतलब गली में घुसते ही नजर सबसे पहले उस पे पड़े। और उनके ऊपर और क्या क्या काफी सारे गिफ्ट वगैरह भी जो है वहीं पे बिल्कुल रखे जाते थे, रेशम के धागे वाली राखी। ओहो हो हो, हम बस उसको देखते थे, उठाते थे और वापस रख देते थे क्योंकि बहुत महंगी मिलती थी। सो या उस टाइम पे नहीं खरीदते थे। एंड फिर वो बीच में शाइनी स्टोन वाली भी बड़ी ट्रेंड की थी 90s के टाइम पे, बच्चों के लिए कलरफुल वो कार्टून वाली राखी, किसी में टाइनी बीड्स, किसी में इतना डेकोरेशन कि रिस्ट पर मानो तो हाथ से बड़ी तो वो राखी हुआ करती थी। रिमेंबर दोस रियली ह्यूज ह्यूज राखीज, और वो गोल्डन कलर के फॉइल टाइप की एकदम पूरा सर्कल में बाहर आता था। हमारा शॉपिंग का टेक्निक ऑनलाइन भाई कोई कैटलॉग नहीं हुआ करता था 90s में, पूरी वॉल ही कैटलॉग और वो पूरी टेबल ही कैटलॉग होती थी। उंगली से पॉइंट किया भैया वो वाली दिखाना, शॉपकीपर बोर्ड से वो राखी निकालते थे, हाथ में उसको लेकर देखो, नहीं दूसरी वाली, फिर दूसरी निकली, इसमें कलर अच्छा नहीं था, फिर तीसरी, वो ऊपर कॉर्नर में गोल्डन वाली है ना, बेचारे शॉपकीपर भैया। एंड फिर इतनी देर से देख रही हूँ, कोई तो पसंद करो, चूज कर लो, लेकिन राखी चूज करना वॉज अ सीरियस बिजनेस राइट, बिकॉज हर सिबलिंग के लिए सेम राखी थोड़ी ना चलेगी, एक के लिए सिंपल, एक के लिए थोड़ी स्टाइलिश, छोटे कजन के लिए थोड़ी सी फन कार्टून वाली, किसी स्पेसिफिक सिबलिंग के लिए नहीं, उसके लिए कुछ अच्छी वाली दिखाओ यार, ये वाली नहीं चलेगी। फिर सिलेक्टेड राखियां काउंटर साइड पे जो है रखी जाती थी, शॉपकीपर भैया जो है उन्हें छोटे ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में डालते थे और हम एक बार फाइनल इंस्पेक्शन जरूर देख लेते थे, कर लेते थे कि सब आ गई ना। मार्केट में उस वक्त एक अलग ही फेस्टिव एनर्जी हुआ करती थी, राखी के स्टॉल्स, मिठाई की दुकान, गिफ्ट शॉप्स, पीपल आर कैरिंग पैकेट्स, कलर्स एवरीवेयर। यू डिडंट जस्ट बाय फॉर अ फेस्टिवल, यू वेंट आउट एंड फेल्ट इट अराइविंग, एंड परहैप्स दैट्स वन ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन शॉपिंग कैन नेवर नेवर कंप्लीटली रिक्रिएट। कन्वीनियंस एब्सोल्युटली, चॉइस अनलिमिटेड, लेकिन 90s में उस क्राउडेड मार्केट में खड़े होकर 100 राखियों में से एक को पॉइंट करके कहना कि भैया बस वो वाली पैक कर दो, उस सिलेक्शन में भी थोड़ा सा प्यार बंधा होता था दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, मस्ती 90s मिक्स टेप का सिलसिला दोस्त यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाओ, स्टे ट्यून्ड।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: आइए जी आइए, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आज राखी का त्योहार जो है, रक्षाबंधन का त्योहार, उसकी यादें ताजा की जा रही है। आई थॉट फेस्टिवल है भाई, 90s से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो 90s में अगर सिबलिंग या कजन दूसरे शहर में अगर रहता था तो रक्षाबंधन के दिन आप उन्हें ऑफकोर्स देख नहीं पाते थे, राइट? क्योंकि फेस टाइम नहीं है, व्हाट्सएप का वीडियो कॉल नहीं है, फोटो इंस्टेंटली भेजने का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आवाज का बहुत ही इंतजार होता था, फोन की घंटी का। आई हैव सीन माय डैड वेटिंग फॉर इट। बुआ कोलकाता में थी तो वहां से आता था ट्रंक कॉल लगा के। सो राखी के कुछ दिन पहले पोस्ट कर दी गई राखी, ठीक है। अब घर में एक ही सवाल कि भाई पहुंच गई होगी कि नहीं। हम भी भेजा करते थे, हम अपने कजन्स को भेजा करते थे। और फाइनली राखी रक्षाबंधन के आसपास एसटीडी कॉल लगाया जाता था, कभी घर के लैंडलाइन से, कभी पास वाले एसटीडी पीसीओ बूथ से। नंबर डायल हुआ, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और उधर से जैसे ही हेलो, बस डिस्टेंस थोड़ा सा कम लगने लगता था। पहला सवाल ऑलमोस्ट फिक्स्ड, राखी मिल गई? हाँ हाँ, कल ही मिली, बांध ली, हाँ। और फिर ऑब्वियसली सिबलिंग कॉन्वर्सेशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में यार, और गिफ्ट उसका क्या, बाद में ड्यू स्लिप पकड़ा दो। एंड देन वहां से बुआ कहते हैं, हाँ हाँ ये तो मुझे पता ही था। अगर कजन था तो फोन एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर होता रहता था, लेकिन कभी आपने नोटिस किया? हम बच्चों को उतना वो मौका नहीं मिलता था, वो बड़े बड़े ही करते थे। ये तो मैं उनका डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उससे नहीं, बुआ से बात करो, अच्छा मम्मी को फोन दो, अरे बच्चों को भी बुलाओ, एक बार आवाज तो सुनाओ तो उनकी। बैकग्राउंड से कोई चिल्ला रहा है कि मेरी भी बात कराओ, कभी लाइन परफेक्टली क्लियर, कभी हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, और यही बोलते बोलते हम लोग चीखने चिल्लाने लगते थे, हेलो हेलो, जैसे कि यहाँ से अपनी आवाज का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो पहुंच जाएगी एसटीडी के जैसे। तो कभी थोड़ा डिले, कभी कॉल कट, और एसटीडी कॉल्स चीप भी नहीं हुआ करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कॉन्वर्सेशन में वो फेमिलियर सी अर्जेंसी थी कि अच्छा चलो बाकी बाद में बात करेंगे। बट हैज व्हाट आई फाइंड वेरी ब्यूटीफुल अबाउट इट, हम एक दूसरे को स्क्रीन पर नहीं देख पाते थे। पता नहीं राखी जो है रिस्क पर कैसी लग रही है, पता नहीं सामने वाला एग्जैक्टली क्या कर रहा है, लेकिन उस एक राखी मिल गई है, बड़ा अश्योरेंस और रीअश्योरेंस इनफैक्ट मिलता था कि जो धागा ऑनवलप में सफर करके गया था वो अपने इंसान तक पहुंच गया है। आजकल सिबलिंग्स की दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक टैप, एक फेस सामने, और दैट्स वंडरफुल, राइट? लेकिन हम 90s के जो लोग हैं उनको वो वक्त भी याद है जब किसी अपने को मिस करने पर उसका फेस देखना जरूरी नहीं था, कभी कभी दूर से आती हुई एक फेमिलियर सी आवाज ही काफी थी। और शायद रिलेशनशिप्स का कनेक्शन तब नेटवर्क से नहीं, इंतजार से थोड़ा ज्यादा मेजर होता था। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, ये है मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: काजू कतली होगी बड़ों के लिए, हमारे लिए तो डेरी मिल्क हुआ करती थी। एंड यू रिमेम्बर दोज रक्षाबंधन स्पेशल बिग बॉक्स वाले पैक्स जो डेरी मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट से बना के आया करती थी। हमारा तो सपना ही ये था कि अगर ये किसी ने दे दिया तो हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे 90s में ये एक चॉकलेट का डब्बा ही यूज टू बी एवरीथिंग फॉर अस। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मस्ती 90s में एक स्टेबल पर आज रक्षाबंधन के 90s वाली मेमोरीज को याद किया जा रहा है। सो वेल, 90s के रक्षाबंधन में थाली कितनी भी ब्यूटीफुली सजी हो, कि रोली है, चावल है, राखी है, मिठाई है, लेकिन हम बच्चों की आंखों का स्कैनर कहीं और ही चल रहा होता है कि चॉकलेट कहाँ है, है ना? बिकॉज एक टाइम के बाद रक्षाबंधन के साथ चॉकलेट की एंट्री शुरू हुई थी 90s में। एंड बॉस, हमारे लिए ना फेस्टिवल का एक्साइटमेंट सडनली अपग्रेड। काजू कतली हाँ हाँ अच्छी है, लड्डू भी ठीक है, लड्डू आप हमें 15 अगस्त को खाते हुए देखना, ठीक है, वो एक्साइटमेंट तब के लिए है। बर्फी फुल रिस्पेक्ट, पूरी की पूरी तरह, लेकिन अगर पैकेट में कैडबरी दिख गई बस अब असली गिफ्ट मिल गया। 90s की चॉकलेट का भी अपना ही स्टेटस था। नहीं, कैडबरी डेरी मिल्क का वो फेमिलियर सा पर्पल कलर का रैपर, 5 स्टार की वो गोल्डन शाइनी रैपर, पर्क का वो पर्पल कलर का रैपर, एंड अगर किसी ने थोड़ा बड़ा चॉकलेट पैक दे दिया तो सिबलिंग सडनली उस दिन का फेवरेट रिश्तेदार हो जाता था कि यही है वो, इसको हर साल हम टाइमली राखी बांधा करेंगे। एंड फनी पार्ट, राखी बांधने का रिचुअल प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है, तिलक लग रहा है, आरती हो रही है, हमें बताया जा रहा है कि पहले मिठाई खिलाओ, उसके बाद ये करो, बट आपका दिमाग जो है ना वो चॉकलेट मेरे लिए ही है, मतलब पहले से ही आप एक एस्टिमेट लगा लेते थे। नहीं, फिर राखी कंप्लीट होते ही डिस्क्रीट चेकिंग, गिफ्ट बैग में है क्या, चॉकलेट कितनी है, एक है या पैक है, और अगर सिबलिंग्स दो है तो इमीडिएटली टेरिटोरियल नेगोशिएशंस कि ये मेरी है, किसने बोला, मेरी राखी के साथ आई है, एंड देयर इट इज। रक्षाबंधन की सीक्रेट सिबलिंग फाइट ऑफिशियली शुरू हो जाया करती थी। वैसे 90s इंडिया में चॉकलेट गिफ्टिंग का कल्चर भी इंटरेस्टिंगली एक्सपैंड ही हो रहा था 90s के टाइम पर। कैडबरी ने चॉकलेट्स को सिर्फ बच्चों के ट्रीट्स से आगे सेलिब्रेशंस और गिफ्टिंग ओकेजंस के साथ एसोसिएट करने वाली एडवर्टाइजिंग पर स्ट्रांगली काम किया। By the late 1990s, campaigns were increasingly positioning chocolate as something for adults and shared happy occasions too. And हम बच्चों को marketing strategy कहाँ कुछ समझ में आनी है, हमारे लिए equation बहुत ही simple हुआ करती थी, festival plus chocolate is equal to excellent festival. आजकल भाई क्या राखी के hampers, insane personalized boxes, gourmet chocolates, fancy packaging, everything is so pretty, right, and so beautiful. लेकिन वो एक simple dairy मिल्क हाथ में मिलने की जो खुशी थी ना 90s में, उसमें पैकेजिंग कम थी, पजेसिवनेस बहुत ज्यादा थी, और सिबलिंग अगर बोले एक पीस देना, एक एक सिर्फ एक, राखी बांधकर 5 मिनट हुए हैं, है ना, प्यार, प्रोटेक्शन, लाइफ लॉन्ग बॉन्ड सब साइड में, हमारा जवाब अपनी वाली खा, मेरे पे नजर मत डालना, आई टेल यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, चलिए चलिए कंटिन्यू रखता है अपना ये रक्षाबंधन वाली 90s वाला सिलसिला।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पर फील करने वाले दिन 90s nostalgia का आईवी ट्रिप मस्ती 90s next day.
2: भाई 90s के फेस्टिवल में मुझे एक रूल आज तक समझ नहीं आया कि अगर घर पर ही रहना है फिर भी नए कपड़े मतलब साफ सुथरा नहा धो के तैयार होकर ऐसा क्यों रहना है। रेडियो मस्ती 5.7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप यहां पर चल रहा है। मैं हूं 90s वाली अंतरा यहां पर आपके साथ। सो रक्षाबंधन की सुबह जो है अनाउंसमेंट ऐसा किया जाता था कि सुबह सुबह एकदम जाओ नहा के आओ, अच्छे कपड़े पहनो, सब आने वाले हैं। एंड हम पूछते थे कि लेकिन जाना कहाँ है, अच्छे कपड़े क्यों पहनने, घर पे ही तो है। बट एग्जैक्टली तो फिर सो बट नहीं, राखी के दिन घर पर रहने का मतलब नॉर्मल घर वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। वो जो फ्रॉक को थोड़े दिन पहले जो आप सिर्फ एक बार शायद आपने पहना होगा, जो थोड़ा सा नया नया एकदम इस्त्री करके प्रेस करके मम्मी ने रखा होगा वो पहन लो, फ्रेश कुर्ता पहन लो, नया थोड़ा अगर सूट कोई रखा हुआ है वो पहन लो, या फिर लोग संभाल संभाल के रखते थे फॉर दीज काइंड ऑफ ओकेजन्स, या वो स्पेशल आउटफिट जो है कि मम्मी कभी कभी ना साड़ियाँ जो उनको गिफ्ट में मिलती थी वो संभाल के रख दिया करती थी कि ऐसे त्योहारों पर वो पहन लिया करे। सो सुबह नहा धोकर निकलो, बाल गीले हैं और मम्मी भी कोम लेकर एकदम रेडी होती थी कि इधर आओ बाल बना दूँ, एंड हम लोग लाइक मम्मी रहने दो ना, एंड ऑब्वियसली रहने नहीं दिया जाता था। फिर सेंटर पार्टिंग की जाती थी, दो पोनी टेल्स बनाए जाते थे, क्लिप जो है प्रॉपरली मैच की जाती थी, या फिर अगर लड़कों के बालों की बात की तो साइड पार्टीशन बना के एकदम ऐसे कंघी को चला दिया जाता था कि एक भी बाल अपनी मर्जी से खड़ा नहीं रह सकता, और फिर लगता था टैल्कम पाउडर। फेस पे तो लगता ही लगता था, नेक पे भी लगाया जाता था भर भर के, कभी कभी इतना पाउडर की फोटोग्राफ में बच्चा नेचुरली अगर फेयर नहीं फ्रेशली डस्टेड लगता था। कपड़े नए हैं तो इंस्ट्रक्शंस भी कॉम्प्लीमेंट्री आती थी कि भाई इसमें कुछ गिरा मत देना, फ्लोर पे मत बैठना, चॉकलेट हाथ में लेकर ड्रेस को टच मत करना, मतलब नए कपड़े पहनकर बच्चा सडनली म्यूजियम के एग्जिबिट में जैसे बैठ गया हो। फिर डोरबेल बजी, रिश्तेदार आ गए हर नए गेस्ट के साथ, अरे वाह कितने अच्छे लग रही हो, और हम ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ खड़े रहते थे बिकॉज 90s किड्स को कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, फिर राखी, मिठाई, कजन्स, फोटोज, एंड अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स लेटर कुर्ता जो है हाफ अनटक्ड, हेयर क्लिप मिसिंग है, फ्रॉक पर चटनी का माइक्रोस्कोपिक स्टेन लगा हुआ है, और वो केयरफुली कोम्ड हेयर, या बैक टू द फैक्ट्री सेटिंग्स आई टेल यू। बट फेस्टिवल्स तब ऐसे ही तो फील होते थे राइट, सेलिब्रेशन के लिए हमेशा कहीं जाना जरूरी नहीं था, कभी घर ही वेन्यू था, फैमिली ही गेस्ट लिस्ट बनती थी, और नए कपड़े पहन लेना ही अनाउंसमेंट था कि आज ऑर्डिनरी डे नहीं है। मे बी इसीलिए आज भी किसी फेस्टिवल की सुबह फ्रेश कपड़े पहनो तो टैल्कम पाउडर की फेमिलियर सी स्मेल आए, तो अंदर से 90s वाला बच्चा जो ऑटोमेटिकली पूछ लेता है कि भाई अच्छा आज कौन कौन आ रहा है। भाई ये जो है इतनी खूबसूरत यादें है ना, आई टेल यू, जरूर बताया करे इफ दीज मेमोरीज कहीं पे आप एसोसिएट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय मेमोरीज, में ये जो है छोटे छोटे बीन बीन कहलाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोट, वी ऑल हैव सिमिलर काइंड ऑफ मेमोरीज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ 90s। स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

अच्छा एक बात बताइए, 90s के रक्षाबंधन में राखी बंधवाना वॉज एक रिचुअल राइट, लेकिन उसके बाद जो होता था, एंड फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज ओके, वो कॉम्पिटिशन ही तो था नहीं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप पे आज हम लोग 90s के रक्षाबंधन की जो है यादों को ताजा कर रहे हैं। सो कजन्स एक जगह जमा हुए नहीं कि सबकी नजर ऑटोमेटिकली एक दूसरे के रिस्ट पे जाया करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, क्योंकि जब वो दूसरे भाइयों के साथ मिलता था ना, तो उनके कुछ बातें ऐसी चलती थी कि तेरी कितनी है, 3, बस मेरी तो देख 5 है, कुछ कुछ की तो मतलब पूरे ऐसा लगता था गर्दन तक राखियां, इतनी राखियां गर्दन तक बंधी हुई है, भरे हुए दोनों हाथ, जगह नहीं मिली है। बट कब रक्षाबंधन का लीडर बोर्ड ये बन जाता था किसी को नहीं पता था। जिसके रेस्ट पर सबसे ज्यादा राखियां वो उस दिन का अनऑफिशियल चैंपियन डिक्लेयर कर दिया जाता था। और अगर जॉइंट फैमिली या कजन्स का बड़ा ग्रुप हो तो हाथ का सीन ही अलग, एक सिंपल धागे वाली, एक मोटी वाली, एक शाइनी गोल्डन वाली, एक छोटी सी, एक इतनी बड़ी की आधी कलाई कवर हो जा रही है। और हर राखी की आइडेंटिटी याद कि ये दीदी ने बांधी, ये बुआ की बेटी वाली है, और ये जो है वो सुबह वाली, वो पड़ोस वाली आंटी की बेटी वाली। फिर डिजाइन का कंपेरिजन किया जाता था कि तेरी वाली में तो बीड्स है, मेरी वाली देखो इसमें स्टोन है, मेरे सबसे बड़ी वाली है। बेसिकली 90s का वेयरेबल सोशल स्टेटस। और राखी बांधने का के बाद उसे तुरंत उतारना, नो, पूरा दिन वो जो कलाई है प्राउडली डिस्प्ले पर रहती थी। खाना खा रहे हो राखी के साथ, खेल रहे हो राखी के साथ, शाम को बाहर गए स्लीव थोड़ा ऊपर करके, पब्लिक को भी तो पता चले। फिर अगले दिन में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता था। किसी का धागा लूज है, किसी का डेकोरेशन टेढ़ा हो गया है, कुछ गिर गया है, किसी का कलर हल्का हो गया है, एक राखी का सेंटर पीस पता नहीं कहां चला गया है, लेकिन फिर भी रिस्ट पर वो लटकी हुई है। फिर मेरी मम्मी मेरे भाई को बोलते, अब निकाल दे यार, गंदी हो गई है। नहीं, बिकॉज समहाउ उस धागे को उतारने का मन ही नहीं करता था इन लोगों का। बॉयज इज इट ट्रू और वॉज इट ओनली विथ माई ब्रदर? पता नहीं, कुछ अलग ही कॉम्पिटिशन करता रहता था वो दूसरे लड़कों के साथ राखियों को लेकर। और मुझे लगता है कि उसमें से इट्स अ वेरी स्वीट थिंग इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट। बचपन में हमें सिंबलिज्म के बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पता थे, हम बस इतना जानते थे कि ये मुझे किसी अपने ने बांधी है, और मे बी इसीलिए नंबर भी प्राउडली काउंट करते थे। 5 राखियां मतलब 5 डिजाइंस नहीं, बचपन के दिमाग में परहैप्स समवेयर इट मेंट देखो मेरे पास कितने सारी बहनें हैं। नहीं तो 90s राखी, और हम बहनें सोचती थी आह आज तो 6-7 जगह से माल आएगा। 90s की राखी लीटर बोर्ड में आपका पर्सनल रिकॉर्ड क्या था और क्या है, जरा बताइए, मुझे भी बताइए। फुल हाउस, रिस्ट से नेक तक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। या डू लेट मी नो, स्टे ट्यून्ड।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ। मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। यहाँ पर रक्षाबंधन की बात हो रही है। Why? Because tomorrow is रक्षाबंधन का त्योहार, एंड अगर आप ऑनकोर सुन रहे हो तो सैटरडे है, विच मीन्स कि एक दिन हो चुका है रक्षाबंधन का। तो बेसिकली फील और फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, और नहीं बना है तो मेरी बातें सुनकर वो आ जाएगा। सो रक्षाबंधन का रिचुअल थियोरेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? कि राखी करो, आरती करो, मिठाई, तिलक, ब्लेसिंग्स। थियोरेटिकली मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज सिबलिंग्स को एक दूसरे के सामने बिठा दो और किसी एक के हाथ में रोली दे दो तो डिवोशन के साथ साथ बदला लेने की भी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती थी। सीन याद है कि जब, अच्छा, मम्मी इंस्ट्रक्शंस दिया करती थी, राइट? कि अच्छे से टीका लगाना, अब इसमें अब चावल उठाओ, अब इसको यहाँ पे ऐसे लगाओ। अब नॉर्मल तिलक के लिए बस एक छोटा सा टीका इनफ है, राइट? लेकिन सिबलिंग के दिमाग में भाई ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है, दोबारा बस अगले साल ही मिलेगा। सो फिंगर रोली में और फोरहेड पर थाप। थाप मतलब ऐसा लंबा टीका। छोटा सा टीका लगाने को बोला जाता था, बट फुल साइज, जितना अगली उतना बेटर भाई के ऊपर। एंड देन वहां से वो चलाता था, ओए इतना बड़ा क्यों लगाया? एंड हमारी तो हंसी ही बंद नहीं होती। ओह उप्स, सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। गलती बिल्कुल नहीं, प्री मेडिटेटेड बिल्कुल था ये। फिर चावल लगाने की बारी। नॉर्मल इंसान दो चार चावल के ग्रेन्स लगाता, हम पूरा पूरा ऐसा पूरा पिंच भर के। अब आधे चावल फोरहेड पे, आधे आईब्रोज पे, आधे नोज पे गिर रहे हैं, उधर से हमें डांट भी पड़ रही है। बस करो, सीधा राखी करो दोनों, अब तुम लोग लड़ाई मत शुरू कर देना। एंड पूरी फैमिली अलग से हंस रही होती थी। एंड देन कम्स ऑफ कोर्स द मिठाई। अब यहाँ भी सिबलिंग को पोलाइटली एक बाइट खिलाया जा सकता है, ओके? जा सकता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप ऑथेंटिक लेवल पे चल रहा हो तो मिठाई का पीस थोड़ा ज्यादा, कि मुंह खोलो और पूरा ठूस दो उसके अंदर, खाओ खाओ, और अगले सेकंड वो इंसान आपको गिफ्ट दे रहा होता है। दैट्स सिबलिंग्स फॉर यू। एक मिनट की मम्मी इसको बोलो, नेक्स्ट मिनट मेरा गिफ्ट का है। और अगर कोई थर्ड पर्सन सिबलिंग को कोई कुछ कह दे सडनली, यूनाइटेड नेशंस पीस ट्रीटी साइंड, ठीक है, हम एक टीम है, हम लड़ रहे हैं उनसे, कि नहीं तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। सो एक्चुअली रक्षाबंधन की मुझे यही इम्परफेक्शन बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। प्यार बहुत है लेकिन प्रेजेंटेशन पॉलिश नहीं है, इमोशन है, साथ में टीजिंग फ्री मिलती है, राखी बांधेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, गिफ्ट भी देंगे, लेंगे भी, लेकिन फोरहेड पर नॉर्मल टीका नहीं लगेगा। नहीं बॉस, इतनी इजीली थोड़ी ना छोड़ेंगे। बिकॉज 90 सिबलिंग्स की डिक्शनरी में अफेक्शन का एक ट्रांसलेशन ये भी था, मैं तुझे रिटेट कर सकता या सकती हूँ क्योंकि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, आई हैव फुल राइट टू डू सो। एंड सच बताइए, आपके घर में राखी का टीका डिसेंट होता था? वो तो अब होता है, मैं तो अभी भी नहीं करती हूँ, लाइक हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। फोरहेड पे प्रॉपर, ना ना ना, टारगेट प्रैक्टिस हमने बहुत सालों से कर रखी है, आई एम टेलिंग यू, द अगलीस्ट इज द बेस्टेस्ट। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर। लेकिन आजकल मेरा भाई चढ़ता नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग। द चिड़ जब आपका जो है सिबलिंग जाता है, दैट यूज टू गिव यू द हाई, अब वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मेरी प्रॉब्लम वहां पे, मैं नहीं हुई हूँ, ये भी वो है।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: हाउ कैन वी फॉरगेट द फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई रिमेंबर दिस, बिकॉज वी रिसेंटली जो है हमने देन एंड नाउ का जो है कॉन्टेस्ट चलाया, ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप का जो है, एंड इट वॉज सो अमेजिंग, राइट? हैव यू सीन द पिक्चर्स ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, जहाँ पर जो है लोगों ने अपनी देन राखी एंड नाउ जो है अपने सिबलिंग्स का जो फोटो भेजा है। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो प्रिटी, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यस, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, और 90s वाली अंतरा जो है आपको ये बता रही है कि 90s के रक्षाबंधन का पूरा दिन ठीक है हो गया, राखी बांधी, ये सारी चीजें हो गए, स्टेप्स टू डू, कजिन्स के साथ मस्ती भी हो गई, अब बस एक कंपलसरी फॉर्मेलिटी बाकी है। रुको, कोई कपड़े चेंज नहीं करेगा क्योंकि फोटो ली जाएगी, और सडनली पूरा घर फोटोग्राफी का स्टूडियो, तुम दोनों साथ में बैठो, अरे राखी वाला हाथ आगे करो, बालों को ठीक करो, सीधे बैठो, एंड सिबलिंग्स आर ऑलरेडी इरिटेटेड कि यार जल्दी करो यार, कैमरा निकला, वो 90s वाला फिल्म कैमरा की बात कर रही हूँ। और यहाँ आज की जनरेशन को एक चीज समझनी पड़ेगी, फोटो हमारे पास लिमिटेड थी, लिमिटेड। फिल्म रोल में 24 या 36 एक्सपोजर्स हुआ करते थे, राइट? मतलब कोई 47 या 10,000 सेल्फीज लेकर बेस्ट वन चूज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एक फ्रेम वेस्ट हुआ तो हुआ। सो पापा कैमरा के पीछे रेडी, हम दोनों समहाउ सिविलाइज्ड एक्सप्रेशन में, एंड क्लिक, वो आवाज भी आती थी, दैट इज दिस 90s कैमरा वाली आवाज आई एम टॉकिंग अबाउट। बस हो गई राखी की फोटोग्राफ, अब फोटो अच्छी आई है कि नहीं, हू नोज, जब डेवलप होके आएगी तभी पता चलेगा। स्क्रीन तो नहीं था ना चेक करने के लिए, अब आंखें बंद हो गई, 3 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हुई कि नहीं हुई। सिबलिंग साइड में देख रहा है अब।

क्या कर सकते हैं यार, फ्लैश में फेस कंप्लीटली वाइट हो गया. सो कंग्रेचुलेशंस, फैमिली एल्बम में आपकी परमानेंट एंट्री हो चुकी है. और वो वेट भी कितना इंटरेस्टिंग था, राइट? फिल्म रोल का कंप्लीट होगा, स्टूडियो जाएगा, डेवलप होगा, फिर एक दिन वो छोटा सा एक फोटो पैकेट घर आएगा, सब लोग इकट्ठा होंगे कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक एक फोटो निकल रही है और ये वाली अच्छी है, उसमें मेरी आँख क्यों बंद है, देखो इसका एक्सप्रेशन कैसा है. एंड द फनी थिंग इज, वही इम्परफेक्ट फोटोग्राफ्स जो है आज सबसे प्रेशियस लगती है. नो फिल्टर्स, नो रीटेक्स, एंड नो वेट वेट वेट, आई डोंट लाइक माय प्रोफाइल, आई डोंट लाइक दिस एंगल ऑफ माइन, लेट मी चेंज. समटाइम्स हेयर वॉज मेसी, समटाइम्स ब्लिंकिंग हैपेंड, बैकग्राउंड में रैंडम प्लास्टिक की चेयर दिखाई दे रही है, टेबल पर मिठाई का ओपन डब्बा नजर आ रहा है. अभी तो AI से सब कुछ इरेज भी हो सकता है, दैट इज सो गुड, राइट? बट दैट मोमेंट इन द 90s वॉज एब्सोल्यूटली रियल. आज हम एक फेस्टिवल में हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, एंड दैट्स वंडरफुल, यस आई अप्रिशिएट इट. लेकिन 90s फैमिली एल्बम खोलो तो हर फेस्टिवल की शायद एक या दो मैक्सिमम कुछ फोटोग्राफ्स आपको मिलेगी. इसीलिए परहैप्स हर फोटो का वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा था, वो सिर्फ पिक्चर नहीं थी, वो प्रूफ थी कि एक दिन हम सब एक ही रूम में एक ही वक्त पर एक साथ थे. और अगर रक्षाबंधन की फोटो में आंख बंद आ गई थी तो कोई एडिट नहीं कर सकता, एल्बम खोलो आज भी वही आंख बंद ही मिलेगी. फैमिली भी आज कहेगी कि देखो इस फोटो में तुम्हारी आंख बंद है, पता नहीं क्या ही सोच रही थी, तुमको कितनी बार बोला है सीधा बैठा करो. ओ गॉड, आई नो आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट ऑल दीज मेमोरीज, बट क्या करें, बस थोड़ी देर और आज का हमारा मस्ती मिक्स टेप का, 90s मिक्स टेप का ये सफर बस रैप अप करने का समय आ रहा है. बट यार, लेट अस एंजॉय दीज मोमेंट्स टिल दे आर विद अस, इजंट इट? स्टे ट्यून्ड.

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: और भाई इसी के साथ साथ आज मस्ती 90s मिक्सटेप का वक्त हो गया है कि हम रैप अप करें। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 90s वाली आंत्रा के साथ आप थे। आज हमने जो है रक्षा बंधन की जो है मेमोरीज और यादों को ताजा किया। मेरे दिमाग में एक थॉट बार बार आ रहा था व्हाइल वी वर टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, कि हम बड़े कब हो गए यार। वो कजन्स के घर के एंडलेस रक्षाबंधन के राउंड्स, वो मार्केट में खड़े होकर राखियां चूज करना, उन ब्लॉक में 11, 21 या 51 रुपए मिलने की एक्साइटमेंट, रिस्ट पर राखियां काउंट करना, तिलक के नाम पर एक दूसरे को फोरहेड को पेंट कर देना, और फिर वो एक मैंडेटरी फोटोग्राफ, ठीक है, जिसमें किसी की आंख बंद, किसी के बाल खराब, किसी का एक्सप्रेशन अजीब, लेकिन पूरी फैमिली एक फ्रेम में। तब रक्षाबंधन का मीनिंग, पर हमने कभी बहुत डीपली इतना सोचा नहीं। हमारे लिए तो वो सिबलिंग वो इंसान था जिसके साथ रिमोट के लिए लड़ाई हम करते थे, जिसकी चीज़ बिना पूछ कर यूज़ कर सकते थे, जिसकी कंप्लेन मम्मी से करनी भी थी, और अगर मम्मी उसको ज़्यादा डांट दे तो थोड़ी देर बाद बुरा हमें ही लगता था, राइट? दैट्स द स्ट्रेंज थिंग अबाउट सिबलिंग्स। बचपन में हम एक ही घर शेयर करते थे, फिर बड़े होते होते सिटीज़ जो है वो अलग हो गई, कंट्रीज अलग हो गई, स्केड्यूल सबके अलग अलग हो गए, जिंदगियाँ सबकी अलग अलग हो गई, और कभी कभी कॉन्वर्सेशंस के बीच का गैप भी बड़ा हो जाता है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लेकिन फिर भी कोई जब भी पुरानी फोटोग्राफ मिलती है ना, कोई चाइल्डहुड का इंसिडेंट मेंशन होता है, एंड सडनली द डिस्टेंस डिसअपीयर्स, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ हु रिमेंबर अ वर्जन ऑफ यू, दैट वर्जन ऑफ यू जब आप खुद भी नहीं जानते थे कि आप बड़े होकर कौन बनोगे, है ना? They knew your ridiculous haircut, your stupid fights, your secret hiding places, your embarrassing nicknames, your entire before version, and maybe that's why what makes that bond so special. Rakhi ka daga har saal naya ho sakta hai, lekin usme badhi hui history bahut purani hoti hai. So this Raksha Bandhan, परफेक्ट पोस्ट हो या ना हो, परफेक्ट गिफ्ट हो या ना हो, एक काम जरूर करना, अपने सिबलिंग को या सिबलिंग्स को वो एक पुरानी मेमोरी जरूर याद दिला देना जिस पर सिर्फ आप दोनों का हक है, एंड फिर कहना यार हम भी क्या थे ना। इसी बात के साथ बिल्कुल छोड़कर जा रही हूँ और मस्ती 90s मिक्स टेप पर आज बस इतना ही। रिश्ते संभाल कर रखिए, पुरानी फोटोग्राफ्स भी संभाल कर रखिए, और वो स्टोरीज भी जो सिर्फ फैमिली को पता है, क्योंकि वक्त सबको बड़ा कर देता है, लेकिन कुछ लोग हमें हमारे बचपन तक वापस ले जाने का रास्ता कभी नहीं भूलते। अभी रक्षाबंधन टू ऑल सिबलिंग्स, और मिलते हैं अगले एक एपिसोड में मस्ती 90s मिक्स टेप पर एक और याद के बहाने, फिर थोड़ा सा और बचपन जीने का टाइम। जी हाँ, 90s वाली आंत्रा कह रही है बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: Hi, I'm Suraj Prajapati.
2: And hi, I'm Samar. Welcome, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के संस्कारी फिल्म मेकर का एकदम आधुनिक वेलकम है ये। हम आज बात करेंगे फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की। थोड़े से शाई हैं, हाई फाई नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही कोई परंपरा है।
1: आप शायद ये सोचते हैं कि परंपरा का निर्वाह करना, बदलते हुए नए जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना, नए सोच के साथ चलना कोई मुश्किल की बात है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता। परंपरा की बहती हुई एक धारा है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उसे अगर हम अपनी ना समझी से दूषित न करें और उसके कण कण में जो हमारी धरोहर समाई हुई है उसमें जो पवित्रता है उस पर श्रद्धा रखें, तो बदलते वक्त के साथ तालमेल रखने में दिक्कत कैसे, सवाल ही नहीं उठता।
2: हाँ जी, तो आज रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से मैं, जिस फिल्म मेकर की लाइफ को हम जानेंगे वो है सूरज बड़जात्या। फिल्म इंडस्ट्री पर जब पायरेसी का ग्रहण लगने लगा था, सैटेलाइट टीवी ने सिनेमा स्क्रीन की चमक को फीका करने की पूरी तैयारी कर ली थी। फिल्म के सब्जेक्ट एक्शन और रोमांस के बीच ही कहीं पेंडुलम की तरह वेगल कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स लोगों के मन की प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तब ग्रैंड से निकलकर एक सूरज उगा, उसने फिल्म इंडस्ट्री को नई सुबह दी, नई वैल्यूज दी, मोहब्बत का एक खास तोहफा दिया और सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आया प्यार, परिवार और परंपरा का एक बेहद खास पैकेज, मैंने प्यार किया।

फिर ये सिलसिला चलता रहा, सूरज चमक उठा। आज उसी सूरज की गुनगुनी नर्म धूप को हम महसूस करेंगे। अब जल्दी से कप कॉफी बनाकर ले आइए, मैं भी एक कप कॉफी ले आता हूँ। दोनों मिल बैठ कर पियेंगे और बेहतरीन नगमों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। सूरज बढ़ जाते की कहानी आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव से। मैं हूँ समर आपके साथ।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

आज भी दिल में कोई भाग्यश्री चिट्ठियों वाले कबूतर उड़ाती है, अंताक्षरी के बहाने रूठे प्रेम से माफी मांगती है, शाम की बेताबियां सजाती है, टेलीफोन पे गीत गाती है, छत पर परी की तरह सुनहरी छड़ी घुमाकर आधी रात को तमन्नाओं के दिए जलाती है, गुनगुनी धूप में पीली साड़ी पहने अपने ख्वाबों को तन पर लपेटे उड़ जाना चाहती है, उड़ते ही रहना चाहती है। जिसने हर लड़की के सपनों को एक प्रेम दिया, हर लड़के को प्रेम बना दिया, वो सूरज बढ़ जातिया है। हमारे साथ आज के लेजेंड फिर से मैं हूं समर। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। सूरज बढ़ जातिया को पारिवारिक बिजनेस मिला राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर। नो डाउट ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, पर जब उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा उस समय राष्ट्रीय प्रोडक्शन कंपनी लॉस में चल रही थी, बहुत सारा कर्जा कंपनी पर हो गया था। उसे उबार कर ले आए सूरज। सही मायने में इस बार राजश्री के सूरज के उदय होने का दिन था। उनके दादाजी ताराचंद बड़जात्या ने उनको ये राह दिखाई। राजश्री के आसमान में पहले तारा आया जिसने सूरज को दिशा दी, आप ये कह सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ताकि मैं भी कुछ अपने शब्दों का जादू तो दिखाऊं आपको, जबकि मैं जानता हूँ कि जादू तो मैं आपके दिलों पर भी कर लेता हूँ। ऐसा भाई लगने में क्या है, गलत फहमी में भी रहना चाहिए, खुश रहने के लिए ये गलत फहमी भी पाल रखी मैंने। वैसे मैंने प्यार किया की बात के बाद से जाने कितने दिलों में गुदगुदी हो ही गई होगी, मैंने जो अभी सुनाया आपको, है ना। अच्छा चलिए अब काम की बात करते हैं, वरना आप कहेंगे समर सिर्फ इश्क की बात करते हो यार, काम कब करोगे। तो ये कहानी काफी पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि शायद ये जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि जब कोई चीज विरासत में मिले तो कितना बड़ा बोझ होता है उस लेगेसी को संभाल कर रखना, उसे बरकरार रखना। सूरज ने ये काम बखूबी किया है, जानेंगे। पहले ये गाने हो जाएं, क्या कहते हैं आप? तो चलिए दिखता ना करते हैं, ये गाने सुन लेते हैं।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: कैसे किया ये?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 PM, Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

वेलकम बैक, मैं हूं एस समर और आज हम एस से सूरज की ही बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो। आज हम बात, जैसा कि मैंने कहा कि सूरज बढ़ जाते की कर रहे हैं, तो हम उनके दादा की विरासत की बात करते हैं पहले। जी, उनके दादा ताराचंद बड़जात्या, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन की नींव रखी। भाई देखिए, ऐसा भी होता है कि कई बार विरासत जो होती है, जो दादा ने रखी, वो पोते तक आते आते गुम हो जाती है। जैसे आरके स्टूडियोज बंद होने वाला है, आपको बताऊंगा। तो आपको सूरज की कहानी सुनाने से पहले मैं तारे की कहानी सुनाना चाहता हूँ, राष्ट्रीय की कहानी सुनाना चाहता हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ इंडिया के राजस्थान के नागौर के एक छोटे से कस्बे कुचामन सिटी में, जहाँ के एक जैन बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ ताराचंद बड़जात्या जी का, जो कि पढ़ने के लिए कोलकाता चले गए। उनके पापा चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करें, लेकिन उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था, फिल्म्स की तरफ उनका रुझान हो गया। साहब, उनके पापा ने उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया और मोती महल थिएटर्स में बतौर अप्रेंटिस लगा दिया। वो काम करने लग गए, कोई पैसा नहीं मिलता था उनको, पर वो काम करते रहे। ये बात रही होगी साल 1933 की, यानी 1933। अब क्योंकि बिजनेस फैमिली से थे, तो उन्होंने पता लगा लिया कि मोती महल थिएटर्स कंपनी की एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, चामरिया टॉकी। ये साउथ में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। ताराचंद ने अपने काम से, मेहनत से सबको अपना मुरीद बना लिया था। उन्हें चामरिया टॉकी का काम संभाला दिया गया। यहाँ आकर उन्होंने एवीएम प्रोडक्शन, जेमिनी स्टूडियोज, विजय प्रोडक्शन और एसएस वासन के साथ न सिर्फ अच्छी रिलेशनशिप बनाई, बल्कि कंपनी को भी प्रॉफिट में ले आए। बिजनेसमैन डीएनए जो था उनके अंदर, पर कब तक किसी और के साथ काम करते भाई। तो वो भी फ्रीडम चाहते थे मोती महल थिएटर कंपनी से, और देश मांग रहा था आजादी अंग्रेजों से। और कमाल की बात देखिए, जिस रोज आजादी का झंडा देश में फहरा, उसी दिन ताराचंद जी ने खुद को मोती महल से आजाद बना लिया और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। अब बस फिर गया था, यहाँ से फिल्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में वो उतर गए। लगातार सक्सेस देखी उन्होंने। इनके तीन बच्चे हुए, अजित कुमार, कमल कुमार और राजकुमार। और राजकुमार जी के बेटे हैं सूरज कुमार बड़जात्या, जिन्होंने फिल्म डायरेक्शन में इस विरासत को सहेजा, पाला, पोसा, आगे बढ़ाया। तो आज उन्हीं की कहानी हम यहाँ से शुरू होती है, और इन गानों के बाद सूरज बड़जात्या की पूरी तरह से कहानी पर फोकस करेंगे हम। आप सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ। आज हम सूरज की ही बात करने वाले हैं।

वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं और मैं समर आज आपको सुना रहा हूं सन यानी सूरज की कहानी। और देखिए अब वक्त आ गया है सिंगापुर सनराइज का। अरे भाई, हमारे जो लेजेंड्स हैं आज के सूरज बढ़ जाते हैं, उनका वक्त आ गया है। तो जब सूरज जी ने जन्म लिया तो परिवार में फिल्में ही थी, आसपास यही अब परिवार का बिजनेस था। हर ओर पूरा माहौल फिल्मी था। दादाजी, चाचा, पिता सब फिल्म में थे। सो नेचुरली फिल्म सेट्स पर उनकी परवरिश हो रही थी। वो काम को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। घर में भी सब लोग एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि सब लोग एक साथ खाते पीते थे, फिल्म्स ही जीते थे, फिल्म्स को ही पहनते ओढ़ते थे। तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उनका ध्यान पढ़ाई में लगता लगा भी नहीं। He was very bad in his academics. खराब नंबर लाते थे, ना केमिस्ट्री जचती ना फिजिक्स। दरअसल उनके ऊपर तो किसी आर्ट का साया था ना। तो क्या सूरज जी ने स्कूल छोड़ दिया? नहीं नहीं, जब वो 11th स्टैंडर्ड में आए तो उनके टीचर ने उनके पापा को बुलाया और बहुत भला बुरा सुनाया साहब। कहा कि जिस फैमिली में सिनेमा की बात होती है वहाँ बच्चा पढ़ाई क्या करेगा भाई। ये बात सूरज जी को बहुत ही खराब लगी और तब से उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की, दोनों साल टॉप किया, आगे भी कॉलेज में अच्छा काम किया। ऐसी लगन उनके भीतर थी भाई साहब, धुन के पक्के। लेकिन असली लगन तो सिनेमा में लगाई उन्होंने। उन्होंने अपने पापा से कह दिया कि उनको तो फिल्में ही बनानी है। उनके पिताजी ने उनको महेश भट्ट जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम पर लगा दिया। यहाँ रहकर सूरज जी ने सीखा काम की बारीकियाँ और फिर जब महेश भट्ट को असिस्ट करना हो, वो आपके गुरु, तो फिर बात ही क्या है, कहने ही क्या। महेश भट्ट उन दिनों फिल्म बना रहे थे सारांश, जिसमें उन्होंने अनुपम खेर को ब्रेक दिया था। अनुपम जी की ये पहली फिल्म थी। सूरज जी इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ गए क्योंकि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ही ये फिल्म थी। सूरज जी के साथ अनुपम की पहली मुलाकात का जिक्र भी करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अभी एक ले लेते हैं ब्रेक। गाने बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए लाइनअप। मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों के साथ साथ इन गानों का भी लुत्फ उठाएं आप और सुनते रहें सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूँ समर और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से। आज जहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय फिल्म्स के सूरज बढ़ जाते हैं, ब्रेक से पहले आपको अनुपम खेर और सूरज जी का एक वाकया सुनाने वाला था, तो अब सुना देता हूँ। हुआ यूँ कि अनुपम जी के शूट का पहला दिन था, सारांश फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेट पर पहुंचे मगर होता ना एक्साइटमेंट में कह लीजिए या एंग्जाइटी की वजह से वो अपनी डायलॉग वाली फाइल भूल गए। अब अगर वो जाते वापस तो शूट अफेक्ट होता। वहाँ उस सेट पर उनको एक दुबला पतला लड़का खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने उसको बुलाया और कहा, मेरी डायलॉग की फाइल ले आओ। वो बेचारा भागते भागते गया और महबूब स्टूडियो से अनुपम जी की फाइल ले आया। और ये शूटिंग कहाँ हो रही थी? राष्ट्रीय स्टूडियोज में। अनुपम जी को बड़ा ही स्वीट लगा ये लड़का ही थे सूरज बढ़ जाते। अनुपम खेर को तब क्या मालूम था कि असिस्टेंट डायरेक्टर बना ये लड़का एक रोज उनको अपनी फिल्म में लेगा और डायरेक्ट भी करेगा। खैर, सूरज जी ऐसे ही हैं, डाउन टू अर्थ। चाहते तो मना कर देते भाई, वो तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के मालिक के बेटे थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अनुपम खेर कहते हैं कि सूरज जी एक बड़े ही बेहतरीन एक्टर भी हैं। हालांकि वो कभी आए नहीं इस फिल्म में, लेकिन डायरेक्ट करते हुए वो पूरे सीन को एक्ट करके दिखाते हैं और क्या कमाल की स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही कमाल। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर। आइए अनुपम खेर जी से सुन लेते हैं कि वो सूरज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
1: आई थिंक जो सूरज का जो अप्रोच है काम करने का, पहली बात तो सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात है और अच्छी बात है वो ये है कि ही इज सो वेल प्रिपेयर्ड। ही इज नॉट मेकिंग फिल्म्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड ही नोज हिज सब्जेक्ट। उनको अपना गाने की सिचुएशन, शॉर्ट विजन, कहाँ ट्रॉली लगनी है, कहाँ क्लोजअप चाहिए, और बहुत लोगों को शायद हैरानी होगी बट वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी है। और वो चाहे बिल्कुल एक्टिंग करके नहीं बताता, मगर वो बता देता है कि उसको क्या चाहिए। एंड आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री, एजिटेटेड, जो कि एक बड़े डायरेक्टर के लिए ऐसा हो जाना बहुत आसान सी बात है। और इट्स अ नाइस फीलिंग।
0: अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि वो एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। आपको उनकी फिल्म हम आपके यहाँ कौन का वो सीन तो याद ही होगा, क्रिकेट वाला, जब बिंदु गिर जाती हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो जरा जोर डालिए दिमाग पर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार मैं मिलता हूँ। ये ब्रेक बड़ा ही मधुर संगीत का है, आप आनंद लीजिए। अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया, शायद ये अब सूरज जी का असर हो गया है। कृपा आ रही है, आने दीजिए कृपा को, आने दीजिए। और आप सुन लीजिए ये गाने रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए?
1: संजना से सच्चाई छुपाकर हमने ठीक नहीं किया सुशीला।
0: क्या मतलब?
1: देख नहीं सकती तू कि संजना प्रेम कृष्ण को किस हद तक चाहने लगी?

0: लीजिए वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स पर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन के उस सीन की जब बिंदु जी गिर जाती हैं। ये क्रिकेट का सीन होता है, बॉल के लग जाने पर बिंदु जी गिर जाती हैं, फिर क्या होता है? अच्छा सुनिए, पहले वो सीन सुन लीजिए आप।
1: भगवंत ऐसा मत कहो,
2: कमरे तोड़ती। सॉरी बुआ जी।
3: सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है?
1: मामी जी ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी।
3: क्रिकेट क्रिकेट ये क्या खेल हुआ, रोज रोज की आफत हो गई।
0: अब इस सीन को पूरा इनेक्ट करके सूरज जी ने बिंदु को बताया। कैसे बताया ये मैं आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने बिंदु जी को कैसे ब्रीफ किया ये सीन सूरज जी की आवाज में सुनिएगा।
4: अरे राम कमरी तोड़ गई।
2: तो कमरी तोड़ गई।
4: I'm sorry बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है?
2: सॉरी की बच्ची तू यहाँ क्या कर रही है?
4: हीरो क्रिकेट सीखने आई थी मामी।
2: मैं वो करूंगी तो ये भूल गई।
4: क्रिकेट ये खेल क्या हो गया, रोज रोज की आफत होगी।
0: हाँ जी सुना आपने, ये होता है एक कलाकार, उसे लगता है सीन परफेक्ट होना चाहिए था। उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, आप भी जानते हैं। एक एक चीज में परफेक्शन, एक्टिंग हो चाहे कलाकारों का सिलेक्शन हो, सेट्स हो, फैमिली वैल्यूज हो, प्यार का फील हो। अच्छा जब वो अपनी फिल्म की कहानी सुनाते थे कलाकारों को तो ले जाते थे एक मोटी सी फाइल, पर सुनाते थे उसे बिना देखे ही, एक एक सीन सुना डालते थे। उनकी बारीकियां देखिए, पर्दों का कलर, कुशन्स कैसे होंगे, आर्टिस्ट की ड्रेस का कलर कैसा होगा, सब कुछ बताते थे वो, सब कुछ सुनाते थे। यानी जब भी वो एक स्टोरी लिखते उसको 2-3 साल तक वो सिर्फ परफेक्ट करते रहते थे, रटते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे आधुनिक कालिदास हैं वो, जो घोंट घोंट कर स्क्रिप्ट पी जाते हैं और स्क्रीन प्ले अपने आर्टिस्ट को सुनाते हैं। सच कहें तो वही हैं जिन्होंने सलमान को प्रेम बनाया। कैसे सलमान से मिले, क्या सलमान ही उनकी फर्स्ट चॉइस है? आप भी जाना चाहते ना, चलिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक ब्रेक बनता है यहाँ पर, उन्हीं की कुछ फिल्मों के गाने सुन लेते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और सलमान खान से उनकी मुलाकात कैसे हुई इसका किस्सा सुनाते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, Rangoli powder with stencils, Thalis, Rudraksh and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं।
2: Life थोड़ी boring लग रही है। Tension नहीं लेने का। Time for your therapy session. मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त. बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
3: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से.

हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। समर आ गया है आपके लिए लेकर लेजेंड्स फिर से, और आज मैं सूरज बड़जात्या की कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। लेट 80s का दौर था, कई स्पेशलिस्ट कई विशेषज्ञ इसे हिंदी सिनेमा का डार्क एज भी कहते हैं। इस दौर का बॉलीवुड सिनेमा स्टार सन्स एक्टर्स से भरा हुआ था। ऐसे में एक स्क्रिप्ट राइटर के बेटे को कौन पूछता, यानी सलीम खान का बेटा सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे एक अदना रोल पाने के लिए। 3-4 साल बीत चुके थे उन्हें, उनके खाते में इक्का दुक्का कैरेक्टर रोल के सिवा कुछ भी नहीं था दिखाने को। उनके पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। तभी ताराचंद बड़जात्या ने घोषणा कर दी, सूरज एक फिल्म बनाने जा रहा है, वो भी राजश्री के बैनर से। सलमान के लिए तब वो बहुत बड़ा बैनर था। वो बड़े ही हेजिटेट होकर सूरज से मिलने गए और कहा, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं मैंने तुम्हें साइन नहीं किया है, मैं दीपक तिजोरी और कुणाल गोस्वामी को शॉर्टलिस्ट कर चुका हूँ। सलमान को लगा कि ये चांस भी गया। लेकिन फिर एक दिन राजश्री स्टूडियो से फोन आया और सलमान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उनके नाम की सिफारिश कई मिलने वालों ने सूरज से की थी। ऑडिशन में उन्हें कुछ डांस स्टेप्स दिखाने को कहा। सलमान उस दिन अपने साथ अपनी दोस्त फराह खान को भी लेकर आए थे और बाद में फराह ने उन्हें बताया कि वो बहुत खराब नाचे। खैर जो भी है, सूरज को वो जच गए। उनको नया और रॉ चेहरा चाहिए था, जैसे उनकी फिल्म की हीरोइन थी भाग्यश्री। तो इस तरह से सूरज के प्रेम बने सलमान। ये वो फिल्म थी जिसने रातों रात सूरज और सलमान दोनों को स्टार बना दिया। यहीं से दोनों की अतरंगी यारी शुरू हुई और जो शुरू हुई साहब, जो चली है यारी वो आज तक है जारी। प्रेम रतन धन पायो तक तो आपने देखी ली, और अब सूरज अपनी अगली फिल्म सलमान के साथ ही करने वाले हैं, इसकी भी वो घोषणा कर चुके हैं। क्या बात है, प्रेम हो तो ऐसा।

राष्ट्रीय प्रोडक्शंस, वीर सावरकर स्ट्रीट, मुंबई 44। फिल्म्स के बाद शायद बंद हो जाएगा। अरे बाबा, न्यूज नहीं सुना रहा हूँ, नहीं डरा रहा हूँ, पर एक वक्त को ये बात सबके सामने थी। ऐसा हो सकता था क्योंकि कर्जा बहुत बढ़ गया था, मंदी थी, जिसकी बात मैंने पहले आपको बताई थी, क्योंकि तब आई मैंने प्यार किया। ट्रेड गाइड लिस्ट में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब तक की सबसे बड़ी 8 फिल्म्स में ये फिल्म शामिल हो गई। तारा चंद जी ने कहा कि ये फिल्म हमारा वाइल्डेस्ट ड्रीम साबित हुई। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे गांवों और शहरों में सिनेमा हॉल में लोग कबूतर छोड़ देते थे, क्योंकि फिल्म में गाना है ना, कबूतर जा जा जा, चिट्ठी लेकर जाता हुआ कबूतर इतना पॉपुलर हो गया था इंडिया में। गोरखपुर में कुछ लड़के सिनेमा हॉल में आए और उनके पास एक बड़ी सी ट्रे थी जो एक सफेद चादर से ढकी थी। सिक्योरिटी ने उनका पीछा किया, चादर हटाई तो देखा उसमें एक बड़ा सा केक था। वो लोग हीरोइन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। बताइए, कमाल हो गया ना ये तो। ब्लैक कार्ड्स आ गए मार्केट में, जिनमें फ्रेंड्स लिखी ब्लैक कैप जो सलमान ने पहनी थी, सलमान की लेदर जैकेट, ये सब बड़ा ही मशहूर हो गया। और ये जैकेट वैसी थी जैसे हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने टॉप गन में पहनी थी, और इसे ट्रेंड बना दिया सलमान खान ने इंडिया में। अच्छा, भाग्यश्री इस फिल्म के बाद ज्यादा फिल्मों में दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनकी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान शादी हो गई थी, तो वो हमेशा मोहब्बत में डूबी नजर आती। उनके चेहरे पर एक अनूठी चमक थी, आंखों में प्यार था, शायद इसी ने सबको दीवाना बना दिया था उनका। वैसे ऑल इन ऑल, इन सब के पीछे बड़ी मेहनत थी सूरज बड़जात्या की, जिन्होंने हर एक बारीकी पर काम किया और परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला, अपने प्रोडक्शन हाउस को बचा लिया। तो आज सूरज बड़जात्या की पूरी कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी। रेडियो मस्ती पर सुनते रहिए। फिलहाल ये गाने एंजॉय कर लेते हैं।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: एक बार फिर से आपका इस्तकबाल, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ लेजेंड्स। फिर से क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ भाई, किस तरह से मैंने प्यार किया ने एक फैशन ट्रेंड ही नहीं मोहब्बत का ट्रेंड भी शुरू कर दिया, और उसकी अगली फिल्म ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई साहब। वो थी उहू उहू अली।
1: हेलो, कौन कहिए
2: जी? आपकी भाभी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हैं।
1: हमें आते आते टाइम लग जाएगा। भाभी से कहिए कि वो आराम करें, लल्लू से कहिए कि हमारा खाना बना के रख दे, और आपके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग।
0: समझ गए होंगे आप मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो फिल्म थी हम आपके हैं कौन। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। साल 1989 को यूएन ने द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली घोषित किया था, तब आई फिल्म मैंने प्यार किया। ये भी एक कोइंसिडेंट ही रहा कि साल 1993 में यूएन ने डिसाइड किया कि अगले साल से यानी ईयर 1994 से 15th मई को हर साल वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाएगा, और 94 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके हैं कौन, और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही दिशा में ले गई। संस्कार, पारिवारिक मूल्य और प्रेम का तड़का, कमाल था सब। सभी को लगा परिवार ऐसे होने चाहिए। ये वही दौर थे जब परिवार टूट रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज अस्तित्व में आ रही थी।
3: हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुश नसीब है जिनकी फैमिली होती है।
0: हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, इनिशियल लेवल पर महज 30-32 सिनेमाघरों में ऑल ओवर इंडिया, लेकिन फिर इसके प्रिंट बढ़ाने पड़े, और एक वक्त ऐसा आ गया था जब इस फिल्म को लोग सिनेमाघरों से उतारने ही नहीं देते थे, पुलिस को बुलाना पड़ता था। बाप रे बाप, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली ये फिल्म बन गई। सबसे पहला रिकॉर्ड इसी फिल्म के नाम है 100 करोड़ के बिजनेस का इंडिया में। एनीवे, राइज एंड फॉल तो होता ही रहता है। सूरज जी की अगली फिल्म हम साथ साथ है ने भी कमाल किया, पर मैं प्रेम की दीवानी हूँ बुरी तरह पिट गई। शायद इसमें उनके प्रेम नहीं थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके बाद विवाह आई जिसने फिर सब कुछ बदल दिया, और फिर आई प्रेम रतन धन पायो लंबे अंतराल के बाद। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप सुन रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: वेलकम बैक सूरज की कहानी यानी सूरज बढ़ जाते की कहानी के साथ समर एक बार फिर से हाजिर है रेडियो मस्ती पर। और चलिए अब बगैर वक्त जाया किए सीधे कहानी पर आते हैं। तो सूरज जी बिजी हो गए थे टीवी शोज में, उन्होंने पियाल बेला जैसा शो बनाया और काफी पैसे और वाहवाही कमाई, लेकिन फिर एक स्टोरी पर काम कर रहे थे, वो सलमान ही उनके दिमाग में थे और नजर में हीरोइन थी सोनम कपूर। जब उन्होंने सोनम की फिल्म रांझना देखी तो उन्हें लगा कि इसे ही लेते हैं फिल्म में। वो सलमान के पास पहुंचे, सलमान ने कहा क्या मैं अब प्रेम के रोल में ठीक लगूंगा? सूरज ने कहा हाँ सही है। अब उन्होंने सोनम की तस्वीर दिखाई, ये है हीरोइन। सलमान बोले ठीक है बताता हूँ। 1.5 महीना हो गया साहब, सलमान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सूरज जी ने फोन किया, सलमान बोले अभी सोच रहा हूँ। 4 महीने बाद सूरज उनके पास पहुंचे, पूछा क्या हुआ? सलमान बोले यार मैंने इस बच्ची को अपने सामने बड़ा होते देखा है, रोमांस कैसे करूंगा इससे? सूरज जी बोले अब आपकी उम्र की को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे ना स्क्रीन पर? सलमान ने कहा ठीक है तो फिर करते हैं, लेकिन आज से मैं अनिल कपूर को अनिल सर बोलूंगा, फील आएगा फील। पर सूरज जी भी कमाल है, जो सोच लेते हैं उसे ही कैरेक्टर लेते हैं और एक फिल्म पर बहुत सुकून से काम करते हैं। वो फिल्म के प्रचार पर ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेटर है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर ज्यादा काम किया जाना चाहिए ताकि फाइनल प्रोडक्ट अच्छा आए। लोग फिल्म देखने आते हैं, अच्छी होगी तो खुद माउथ पब्लिसिटी करेंगे, अपने आप चल जाएगी फिल्म। तो चलिए आज तो दीजिए इजाजत, आज जाने का वक्त हो गया और हम चाहेंगे कि सूरज बड़जात्या यूं ही फिल्म्स बनाते रहें। मैं अपनी मम्मी को बोलता रहूं चलो आज सिनेमा देख कर आए।
1: एवरी टाइम यू मेक अ फिल्म द फर्स्ट डे ऑलवेज गिव्स यू बटरफ्लाइज इन द स्टमक, सो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन वंस अगेन।
0: तो फाइनली इजाजत दे दीजिए अब, बाय बाय, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कुछ वादे भी करते जाइए, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। और मुझे भी याद कीजिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

जाने क्या मोड़ आया, सिरहाने को छोड़ आया, तोड़ आया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ आया।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना।
1: हमें तो भाई सुबह सुबह जब हम ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर भाई का कौन सा गाना लगाएं तो सारे भाई भाई सामने आ रहे थे, मुन्ना भाई, बजरंगी भाई जान,
2: भाई जान।
3: Setting the perfect hot temperature for Friday. Musty madness with Renuka and Antara.
2: ये कैसा सिलसिला चलाया हुआ है। नो भाई भाई, इट इज फॉर एवरीबॉडी, चाहे कोई भी हो। इट इज द रक्षा द बंधन। हैप्पी रक्षा द बंधन रेणुका।
0: यस,
2: हैप्पी रक्षा द बंधन।
0: क्या तुम मेरी रक्षा करोगी, मैं तुम्हारी रक्षा करोगी।
2: एक गी यस, वी शैल डू दैट। और करते हुए आ ही रहे हैं, एटलीस्ट मेरे अकाउंट की रक्षा तो रेणुका काफी टाइम से कर रही है। पैसे आते रहने चाहिए ब्रो, पैसे आते रहने चाहिए।
1: बिल्कुल। सो जो भी पैसे देता है वो आज के दिन में भाई बनेगा। रेडियो मर्सी 24/7 पर कौन बनना चाहता है मेरा भाई यहाँ पर। लेकिन अगर आप मना रहे हैं अपने भाई बहन के साथ में रक्षाबंधन, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन में। आपकी जो आपका आपका जो रिश्ता है वो लंबा चले, खुशियों से चले। जब भाभियां आ जाए या जब जीजा जी आ जाए तो लड़ाइयां ना हो, और आपके बच्चे भी आपस में एक दूसरे को गालियां ना दे, और खुशी खुशी से कजन कजन बन के खेले। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ मैं कि नहीं?
2: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत विशेस मेरी तरफ से भी देते हुए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मस्ती मीट 24/7 सुनते रहो।
0: वाह वाह वाह
1: तो बस मौजा ही मौजा आज के दिन में शुरू होता है मसी मैडनेस। दिस इज फ्राइडे एंड ऑफ कोर्स दिस इज अंतरा और मेरा, ये वाला शो जिसको आप सब छुप के सुनते हैं और बताता कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: कहते हैं ना, जिसका एक भाई नहीं उसके 50 भाई होते हैं, तो हम बस उसी वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे.
2: अरे ये राके वाके वाले भैया को थोड़ा सा साइड में रखो. लेट्स टॉक अबाउट द भैयास जो हमने ऑन द वे अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशन वाले भैयास बनाए थे. विकी भैया, राहुल भैया, करण भैया. आज का दिन उनको भी समर्पित बिल्कुल करना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अरे मेरे केस में मेरा कोई भाई नहीं बनता था, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के भाई बनते थे, क्योंकि वो उनके भाई बनते थे तो फिर वो मेरे से बात कर सकते थे. सो आई वॉज इन डिमांड दैट वे इन स्कूल, यू नो. सो मेरी बेचारी जो बेस्ट फ्रेंड होती थी स्कूल में, वो परेशान होती थी, कहती थी यार सारे मेरे भाई बन जाते हैं तेरे चक्कर में, मेरा क्या होगा. बट इट वॉज गुड फन टू सी कि वो भाई भाई खेलना जो होता था, उफ माय गॉड, दैट वाज रियली
2: वेरी वेरी. दैट वाज द काइंड ऑफ ओनली टिकट वी हैड टू ताड़ोफाय द हैंडसम भैयास ऑफ द मोहल्ला. और क्या करे, मम्मी ऐसे तो ताड़ने देगी नहीं. जैसे रोहित भैया, विक्की भैया बुलाया तो कहती चल ठीक है अब तो भैया हुआ. होम देम उनके दिमाग में भैया, हमारे दिमाग में तो कुछ और ही.
1: आई नो सही. Well, भाई मैं तो हमेशा से यही बोलती थी, जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा एक आध भी चलता हुआ आ गया मेरे पास कि मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूँ, तो मैं बोलती भाई मेरे को तो भगवान ने भाई नहीं दिया, तू कौन होता है बनाने वाला, हम इंसानों की कहाँ औकात. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, हाउ मेनी भाईज हैव यू मेड अलोंग द वे, जरूर हमें बताओ. मतलब वी वुड लव टू नो दैट, राइट अंथरा, वोंट वी?
2: ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, प्लीज बताना. हां बिल्कुल मत छुपाना, स्पेशली हमसे.
1: गर्ल्स लाइक टू स्विंग. गुड मॉर्निंग.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: कान खोल के सुन लो ये खबर जो मैं देने वाली हूँ. कान खोल के सुन लो.
2: और क्या खोल के सुनता आदमी वैसे भी. And I hope she won't answer that. Good morning, and welcome Radio Masti 24/7 पर. जी हमारे ऐप का नाम मस्ती मीडिया 24/7 है, पर हैं तो हम अभी भी रेडियो मस्ती 24/7 ही. क्या सुन रहे हैं आप? मस्ती मैडनेस.
1: जी हाँ, मस्ती मैडनेस में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कान के साथ साथ वैसे तो खोलने को बहुत सारे लोग बहुत कुछ खोल के सुन सकते हैं, बट कमिंग बैक टू दिस 66 ईयर ओल्ड, हुआ कुछ ऐसा भाई साहब हमारे इनके साथ कि इन्होंने ना एक टाइम पर ईयर प्लग लगाए हुए थे किसी कारणवश. ठीक है, अब ईयर प्लग में उन्होंने एक कान का निकाला, दूसरे का वो निकालना भूल गए. ठीक है, अब क्या था कि इट एक्चुअली बिकेम लॉज्ड, इतना कान के अंदर घुस गया. और डॉक्टर ने जब मतलब ये गए कि मुझे ना कुछ कम सुनाई दे रहा है और ऑलमोस्ट सुनाई के नहीं बराबर दे रहा है, तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को भी नहीं मिला क्योंकि उसके ऊपर जो है ना ईयर वैक्स हार्डन होके एकदम जम सी गई थी, तो डॉक्टर को भी नहीं मिला कि अंदर कुछ ऐसा लॉज हो रखा है. इवेंचुअली अपने घर के एक बहुत कुछ सालों बाद, 5 साल तक बंदे ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब तो मैं डेफ हूं, मैं तो सुनाई नहीं देता है. सो ईयर कैमरा जो है किसी एक दिन चेक किया, उसने कहा ये क्या है, ENT स्पेशलिस्ट के पास गया, पता चला कि वो 5 साल से वो ईयर प्लग निकालते ही उसको सब सुनाई देने लगा. बताओ,
3: 5 साल
1: 5 साल
3: 5 साल तक ईयर प्लग अंदर, मतलब ओके.
2: मतलब चलिया नहीं, झलिया बोलना चाहिए इस आदमी को. रेडियो मस्ती 24/7 पर. हाउ कैन यू हैव समथिंग इन योर ईयर फॉर 5 years? मतलब आप अपने किसी भी बॉडी के किसी भी होल में 5 साल तक कोई चीज परमानेंटली कैसे रख सकते हैं? क्यों भाई?
1: I am sure that he was happy. निकालने के बाद जब वो घर वापस गया होगा तो उसको लगा होगा कि भाई ये तो अंदर ही ठीक था.
2: खाली खाली फीलिंग होने लगी.

0: बिल्कुल, एक दिल्ली के हैं ये, और इन्होंने जाकर ओबरॉय उदय विलास होटल में, मतलब जाके खूब ऐशें करी, ऐशें जिसे कहते हैं, ठीक है, और वहां से बिना कुछ पे किए निकल गए। अब आप बताइए, अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ में उन्होंने अगस्त 14 को वहां पर चेक इन किया और 23 तक रहे, और ओबरॉय उदय विलास इज लाइक अ ब्यूटीफुल होटल, राइट। और फिर उसके बाद 24 को जब वो बाहर निकले तो उन्होंने भाई स्टाफ को बोल दिया, मेरी तो ट्रैवल एजेंसी पे करेगी जिनके थ्रू हमने चेक इन किया है, तो वो निकल गए वहां से। लेकिन पैसा कहाँ है? होटल के मैनेजमेंट ने कहा कि ट्रैवल एजेंसी जो है मकर बहा ट्रैवल एजेंसी, उन्होंने कमरा तो बुक किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई डिस्काउंट ये वो कुछ स्पेशल चीजें, तो होटल ने सब मना कर दिया था। उसके बाद में आप सोचिए, इस वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल जहां पर रणबीर कपूर और दीपिका की ये जवानी है दीवानी भी वहीं पर फीचर करी गई थी, 50 एकड़, 200 साल पुराना एक हंटिंग ग्राउंड महाराणा ऑफ मेवाड़ का, और मतलब क्या क्या है वहां पर। अब उन्होंने जारी कर दिया FIR कि भाई साहब आप कैसे अनुराग यादव जी गायब हो सकते हैं बिना पे किए, आपके तो हम घर तक पहुंच जाएंगे। अब वो पड़े अनुराग यादव के पीछे, अनुराग यादव जी पड़े हैं ट्रैवल एजेंसी के पीछे, और बस बाकी हम इस न्यूज को बता रहे हैं।
1: मतलब मैं, मेरा सवाल है कि ऐसे चेकआउट कर सकता है कि मेरा पैसा ट्रैवल एजेंसी देगी बोल के चेकआउट कर ले, मतलब वो भी इतने बड़े होटल में, हो सकता है ऐसा?
0: हाँ, आई थिंक इट्स टाइम टू लुक एट देयर प्रोसेसेस। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यस, एंड आई एग्री विद यू।

0: agree. They make Friday mornings the funkiest and the
1: photo अच्छी आनी चाहिए. मतलब फोटो अच्छी नहीं आए तो that is like the biggest crime, man. Radio Mast 24/7 पर. हाँ जी बताइए तो क्या खबर
2: है. Criminals भी हाँ criminals भी यही कह रहे हैं कि this is the biggest crime.
1: हाँ
2: क्योंकि एक वांटेड आदमी ओहायो का, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ. डोनाल्ड प्यूग इसका नाम है, ठीक है. तो इसको ना वांटेड था फॉर स्किपिंग कोर्ट का अपीयरेंस एंड देन काफी सारे वैंडलिज्म वगैरह के इसके ऊपर केसेस चल रहे थे. तो इसका ना कोई पुराना ऐसा मगशॉट कभी लिया होगा तो वो वांटेड का जगह जगह पे उसकी फोटो जो है बांट रखी, बाहर पोस्टर्स पे वांटेड में उसकी शक्ल वो वाली लगा रखी. भाई को लग गया बुरा. इसने ईमेल किया कि देखो जो तुमने मगशॉट लगाया है मेरे फोटो का बहुत ही गंदा है, लाइक इट इज टेरिबल. अटैच्ड इज अ वेरी नाइस पिक्चर. उस पिक्चर में बिल्कुल सर एकदम अपने गाड़ी के अंदर शेड्स वेड्स लगाए, एकदम मतलब रैप्चरिक टाइप का एकदम कूल वाइब देते हुए, यूज दिस वन फॉर द वांटेड पिक्चर, प्लीज चेंज दैट, दैट्स लाइक टेरिबल.
1: भाई फोटो जरूरी है जैसा कि हमने कहा, बाकी सब ठीक है. भाई चाहे जवानी शीला की हो, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, इट इज इम्पोर्टेंट कि फोटो में अच्छे से दिखे. रेडियो मस्ती 24/7 पर. भाई चोरों की भी इज्जत होती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आपको मिलते हैं अगले घंटे. वैसे हैप्पी रक्षाबंधन. कितने बजे आ रहे हैं भैया और कितने बजे जा रही हैं दीदियाँ लड़ाइयाँ कराने दूसरों के घरों में, जरूर बता देना.

0: और आठ बजने के उस तरफ भी सभी बहनों को लाल लाल कपड़े और गोटा जरी वाले कपड़े, आज के दिन में लॉट्स ऑफ मिठाइयाँ और लॉट्स ऑफ पैसे मुबारक हों। जी हाँ बिल्कुल, ये है रक्षाबंधन और उसी की विशेष करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। एक भाई जो बहन बनने की कोशिश कर रहा है।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: अच्छा, ये ऐसा नहीं लगता कि हमारे मस्ती मैडनेस के खबरों के स्टैंडर्ड में कितना नीचे चला गया है ये, कि अब ये बात सुनकर ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि तो क्या हो गया।
0: हाँ भाई, तो भाई मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक जो 22 साल का आदमी है, 22 साल का लड़का, वो काफी वायरल हो गया है क्योंकि ही इज बीन कैटफिशिंग मैन विद फीट पिक्चर्स, क्योंकि वो अपने कॉलेज के पैसे देना चाहता है। सो बेसिकली तुम्हें तो पता ही है कि कुछ लोग ऑनलाइन जाके लड़कियों के पैरों की तस्वीरों को खरीदते हैं।
2: आजकल बहुत चल रहा है।
0: एग्जैक्टली, तो इसीलिए पेडिक्योर के खर्चे बढ़ गए हैं, क्योंकि क्या है कि आप अगर फोटो में बेच बेच के अपने पैरों की आप पैसे कमा सकते हैं। तो भाई एक लड़के ने ये सोचा कि मेरी कॉलेज की एजुकेशन के पैसे निकल जाएंगे, तो उसने फीट फाइंडर पर गया, उसने अपना अकाउंट बनाया, फीमेल प्रोफाइल, एंड ही स्टार्टेड सेलिंग फोटोज ऑफ हिज फीट। वहां पे उसने अपने पैरों को शेव किया, मॉइस्चराइज किया, एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग एंगल से, और बहुत ही जल्दी उसके पास पेड रिक्वेस्ट आने लग गई, इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट फॉर तेरी पुरानी जुराबे दे दे हमको। हाय हाय, कितने ही घटिया किस्म की रिक्वेस्टें आती हैं, लेकिन फीट फाइंडर पर आप अगर जाकर अपना अकाउंट खोलेंगे तो ये सब आप खुद भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बस पैसा आता गया और उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इस बात पे उसको शाबाशी दूं या मैं क्या करूं।
2: पैर धो के पीने चाहिए ऐसे क्रेजी आइडिया के लिए, पैर धो के।
0: शायद वो भी कोई मांग रहा हो पीने के लिए, ब्वा गंदी जुराबे दे दो ब्वा।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere. Tum tagina digi tagina tagina

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: जगाती है कयामत कोई।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. जी हाँ, आज इस पावन दिन पर क्या हुआ अंतरा, क्या हुआ? सारे भाइयों की याद आ रही है, मुंह बोले वाले भाइयों की.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday.
1: हाँ जी हाँ जी, मेरी खबर कुछ ऐसी थी कि मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला रेनू का इस रक्षाबंधन मोड में मत शुरू करना. कैसे कैसे बोल पाऊंगी कि मैं किस किस के बारे में, किस के बारे में बात करने वाली हूँ? करो, किस किस के बारे में करो ना बात करो. So well, कुछ ऐसा है कि आजकल के जो इतने वायरल और ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, तो इस तूफान में हर कोई ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि कुछ तो ऐसा तूफानी कर जाएंगे कि लोग याद रखेंगे, कि मतलब बहुत सारे मिलियन व्यूज आ जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है. अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने सोचा होगा थोड़ा, जितना थोड़ा बहुत दिमाग अगर है भी तो उतना यूज करके, सफेद कलर की बॉयफ्रेंड की गाड़ी, ठीक है. दिस इज वन ऑफ दोस कार्स, इफ यू रिमेम्बर इंडिया में, वो जो पीछे वाली स्क्रीन होते हैं ना, उसमें लोग ये लड़के बड़ा बड़ा अपना ना ये ठाकुर लिखा हुआ है एकदम लाइक बोल्ड लेटर्स में, एंड अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स आल्सो यू काइंड ऑफ गेट टू रीड एंड यू गेट इट. You kind of get it, कि भाई चलाने वाला तेरा भाई है, type of चीज़ें लिखी होती है. So, अब इन्होंने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड से 3400 पुछिया, खुद को नहीं, मतलब खुद को भी दिलाता तो मैं समझती कि यार मैं समझ सकती हूँ, गाड़ी को उसके लिपस्टिक भरे होठों से चुम्मिया दिलाई. वाह, को 3400 फील ही अलग है यार इस इंसान की. अपने आप को राजेश खन्ना समझ रहा है. याद है राजेश खन्ना की गाड़ी के ऊपर सारी की सारी लड़कियां आके पुच्चियां देके चली जाती थी, एंड दैट गाय यूज्ड टू कम इन हिज कार, यूज्ड टू बी ऑल लव्ड एंड व्हाटएवर, कि यहां राजेश खन्ना ने हाथ लगाया है, यहां ये, यहां वो. ओह माय गॉड.
2: बट पुच्चियां भारी पड़ गई, चलान हो गया 5500 का.
1: And क्यों ऐसा क्यों, क्या जेलस हो गया इंस्पेक्टर?
2: I have no idea. The comment section is so funny. सबसे टॉप में लिखा ही पूछा ही ये है, but what is the crime here, sir? किस बात का चलान है ये, किस बात का?
1: वो इस बात का होगा कि even फ्रंट स्क्रीन पर करा ली होंगी इसने. तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर को पूरा हक है भाई साहब, हक है. अगर आप देख नहीं सकते और अगर बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, एंड ऑल्सो ही इज कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन टू द ट्रैफिक, राइट? बिकॉज सारे लोग उसको देख रहे हैं रादर देन द ट्रैफिक लाइट्स. तो
2: ट्रू,
1: बहुत बड़ा गुनाह है.
2: इट इज इनसेन. कमेंट में वो लोग पूछ रहे हैं, वेट, हु काउंटेड द किसेस? एक कह रहा 300 वर्ड्स का ऐसे लिख देता यार, इससे तो बेटर ही था.

0: और यहाँ जनहित में जारी है ये वाली खबर। जनहित क्या, सारी बहनों के नाम जारी है ये वाली खबर। बहनों सुन रही हो ना तुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम द भाई जान्स।
1: हाँ जी हाँ जी, भाई जो हमारी जान है, let's revise and revive all those things, हाँ? जान लेने पे तुले हुए होते थे जब हम छोटे थे, like जान लेने पे। मेरा भाई तो मुझे WWF देखकर फिर वो सारे जो moves है ना मुझ पे try किया करता था, choke slam and all, मतलब कि धड़ाम। फिर मैं भी कुछ कम थोड़ी ना थी, मैं भी उसको बहुत मार, एक बार उसने मेरा सलमान खान का पोस्टर फाड़ दिया था गुस्से में, और फिर मैंने उसकी जो धुनाई की थी कि मतलब आज भी वो याद करता है कि दीदी मैं भूल नहीं सकता। मैंने कहा भूलना भी मत
0: वो बेटे की
1: छुआ कैसे तूने मेरा पोस्टर।
0: तो एक भाई था और एक भाई था तुम्हारे घर में, है ना, दोनों की दोनों ही बिल्कुल एक ही घर में। मैं तो आई एम थिंकिंग माँ बाप का क्या हाल होता होगा। यू नो आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज माई मॉम हैज 3 ब्रदर्स, ओके, एंड शी इज दी ओनली सिस्टर, और जो हम है हमारे पास 0 ब्रदर, हम चारों बहने, ठीक है ना। तो अब तुम सोचो कि भाई मॉम का फुल ऑन फोकस होता था, एंड दूसरा होता था ऑफकोर्स माई डैड, ही हैड 2 सिस्टर्स, राइट। सो अब वही केओस जो हर घर में होता है कि बहन ने आना भी है और बहन ने जाना भी है, है ना। तो हर घर में ये केओस रहता था हमेशा, राइट, कि भाई अगर तुम चली जाओगी तो मेरी बहनें आएंगी, और अगर बहनें आएंगी तो मैं कब जाऊंगी। सो ऑल दैट केओस को सॉल्व करते हुए कैसे घर घर में ये रेजोल्यूशन होता था कि सुबह ये जाएगी, शाम को ये होगा, भाई आएगा, भाई जाएगा। ओ माय गॉड, एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर सिस्टर के घर में, एंड देन द रोना धोना कि मैं एक दिन भी ना आऊं, क्या भाभी को आज ही जाना है। तो I think it's a drama in every household, right, in India, you know?
1: I am 110% sure. मतलब हर घर की कहानी है। In fact, mixtape है, I was remembering all these times कि कैसे हम जब अपने cousins के घर भी जाते थे राखी बांधने with mama and all, नजर हमारी राखी बांधने पे नहीं होती थी, हमारी ये होती थी कि वो गिफ्ट क्या मिल रहा है। डेरी मिल्क के साथ वो बड़ा वाला पैकेट दे रहे हैं कि क्या है, वहां पे नजर है, लगता है पैकेट में रखा हुआ है, लगता है यहाँ पे भाई राखी बांध लो, फोकस कर लो ना।
0: और एक बार तो मुझे ये भी याद है, हम तीनों बहनें चारों को जैसे सारे नोट वोट छाप लिए ना सारे कजन से राखियां बांध के, उसके बाद हम चारों शॉपिंग पे गए लाजपत नगर दिल्ली में, मजा ही आ गया। मतलब उस दिन तो बहनों की भरमार लगी होती है, और वो दुकान वाले भैया तो इतने खुश होते हैं कि तुम्हारे और भाई बने। Remembering all those beautiful days from the 90s. Thank you so much, Anka.
1: Of course.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: Mumbai.

0: गणपत कौन है?
1: और दिल्ली के उस ट्रैफिक के नाम जो रक्षाबंधन पर पागल हो जाता है, ये वाला शो हमारा मस्ती मैडनेस रेडियो मस्ती 24/7 पर। हैप्पी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन।
2: Setting the perfect hot temperature for Friday.
3: हाँ, जिसको हमें instructions दिए जाते थे कि अच्छे से करो, ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे इधर से left to right.
1: गलत कर रही है। I know. It's so much fun. अब मैं आपको लेके जाऊंगी बहनों के नाम जनहित में जारी, जो मैंने थोड़ी देर पहले कोशिश करी थी आपको बताने की खबर। अभी बेंगलोर से खबर कुछ ऐसी आई है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीधा के सीधा एक बात क्लियर कर दी है, कोई भी इंक्लूडिंग अ हस्बैंड कैन नॉट कमांड एंड डिमांड एनी फीमेल इंक्लूडिंग हिज वाइफ टू डू हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। ऐसा कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने, क्योंकि एक आदमी ने रिविजन पिटिशन फाइल करी थी। और कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, दोनों ही आदमी और औरत में इक्वली शेयर होने चाहिए। अगर पेरेंट्स का ध्यान रखना है तो प्राइमरी जो है ड्यूटी वो है सन या डॉटर की, नॉट द सन इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ की, क्योंकि लुकिंग आफ्टर द इन लॉज शुड बी अ वॉलंटरी एक्ट एंड नॉट बाय फोर्स। मतलब जस्टिस चिलाकुर सुमालथा, मेरा मन कर रहा है मुआ, मुआ, मुआ। क्यों भाई, सही है कि नहीं है?
3: इनको इनको भाई बना लो, ये सही मटेरियल है भाई वाला।
1: सही बात है बिल्कुल, क्योंकि ऐसी अंडरस्टैंडिंग, मजा ही आ गया बिल्कुल, है ना?
3: मतलब

0: वाइफ की जो डेडिकेशन है टू द फैमिली वो ओबीडियंस और सबमिशन नहीं होती है। ओए होए मजा ही आ गया कि जब उसको घर जाना है तो उसको घर जाना है ऐसे
1: ऑनवलप लाओ यार हम यहाँ से भेजेंगे।
0: यार सच्ची मेरा मन कर रहा है मैं इसको बहन बना के मैं गिफ्ट दे दूँ। ये भाई है कि बहन है पहली बात तो मुझे ये नहीं पता। लव इट जस्टिस लव इट कर्नाटका हाईकोर्ट जिंदाबाद। ठीक है भाई है ना भाई।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
3: Yo, boys, I am singing song, soup song.

0: भाई ये जो पूरा पूरा फेस्टिव टाइम शुरू हो जाता है ना, जैसे कि आज रक्षाबंधन है, उसके बाद में जन्माष्टमी है, फिर गणेश चतुर्थी है, इतना कुछ हो रहा है राइट ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, दिस इज द टाइम जब हमें ऐसा लगता है उफ इट इज हैप्पीनेस एवरीवेयर एंड गुड ब्लेसिंग्स.
1: They make Friday mornings the fun.
2: But Renuka, we have to tell them about the, I have been talking about it on my shows. We have to tell everybody what we saw at 21 Cup Road.
0: Oh my God.
2: Our surreal experience over there. मतलब हम सच्ची में होता है ना, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि the visual was so beautiful that picture cannot capture that.
0: No.
2: It was so beautiful.
0: Totally.
2: It was the same thing. जब हम वहाँ पे गए, we were like, what is this? So magical.
0: मजा आ गया. So जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं, कुछ सालों से of course हम गणपति जी को लेकर आते हैं अपने चतुर्थी पर, है ना, और फिर सेवा करते हैं सब कुछ, बड़े प्यार से उनको फिर बाय बाय करते हैं रोते हुए. एक्चुअली वी ऑल गेट सो इमोशनल बिकॉज दैट इज हाउ गणेश चतुर्थी इज राइट. एंड ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन मूर्तियां लाने की कोशिश करते हैं विद अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, बट व्हाट वी सॉ एट ज्योति, एंड दिस इज एट 21 कफ रोड राइट, हमने जब ये उनका पूरा शोरूम देखा ऑफ दीज इको फ्रेंडली गणपतिज, मैं कहती हूँ आपको ज्वेलरी की जरूरत ही नहीं है. उनका जो हाथ का काम है वो इतना बेहतरीन है, मुकुट से लेकर एक एक डिटेलिंग तक कि, और 6 इंच से शुरू हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 6 इंचेस के गणपति टू ऑफ कोर्स गोइंग अप टू 42 और इवन मोर देन दैट राइट.
2: मैं तो कह रही हूँ कि जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस सेक आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू गो देयर वंस एंड टेक अ लुक एट इट, वेयर यू एंटर एंड यू आर जस्ट सराउंडेड विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के गणपति के आइडल्स,
0: ओनली दैट,
2: एंड यू कैन नॉट पिक वन. लाइक आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत, लाइक जहां पे मैं मुड़ रही थी वहां पे लग रहा था यार ये कितना सुंदर है, एंड आई वाज लाइक रेणुका हाउ आर वी गोइंग टू चूज फ्रॉम दिस, इट इज सो डिफिकल्ट.
0: एंड यू वांट विद दोस ब्यूटीफुल क्लोथ्स जो उन्होंने सैटिन के पहने हुए हैं, या यू नो जस्ट काइंड ऑफ डेकोरेटेड, या फिर इवन मिट्टी के, यू रिमेम्बर द ग्रीन कलर्स एंड इवन द मिट्टी के कलर के विद गोल्डन
2: व्हाइट कलर के कपड़ों के साथ, याद है आपको?
0: हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वेदर यू डू गणेश चतुर्थी और यू डोंट, यू हैव टू हैव अ गणपति आइडल इन योर हाउस, एंड इट कैन नॉट बी फ्रॉम एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट 21 कफ रोड सिंगापुर एंड ज्योति का जो वो वेयर हाउस है, वहां पर जाके देखो. ज्योति स्टोर्स कैंबल लेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ उनके वेयर हाउस की, जाके एक बार देख लो और मैं आई प्रोमिस यू यू विल फॉल इन लव. I'm still imagining. Oof, beautiful.
3: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.

0: भाई 9 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं. हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन. एंड यस, रिमेम्बर दोस टाइम्स व्हेन आप लोगों, मतलब सिबलिंग्स, एक दूसरे से तो झगड़ते थे लेकिन किसी तीसरे ने आपके सिबलिंग से पंगा लिया तो सडनली यू आर वन टीम फॉर सम रीजन.
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: दुश्मनों को गिरा देंगे. चाहे तू मेरा सबसे ज्यादा जानी दुश्मन है लेकिन फिर भी बाहर वालों के सामने नहीं दिखाना है. No, but honestly, those are the days, right? मैं तो अपनी एक बहन के साथ मिलकर दूसरी बहन की चॉकलेटें चुराकने में ही मेरा तो मतलब परम जीवन था वो. क्योंकि मुझे चॉकलेट भी खानी होती थी तो फिर मेरे को इनाम में मिलती थी वो चॉकलेट जो मैं चुराती थी. और फिर जब उसको पता लगता था दूसरी वाली को कि भाई मैंने और बड़ी वाली ने मिलकर ये काम किया है तो वो आती थी बोलने के लिए, मेरी चॉकलेट कहाँ है, किसने खाई है, क्योंकि वो एक एक बाइट लेके अंदर रख देती थी, है ना, वो आगे के लिए, रेनी डे के लिए. और हमारी आदत थी कि हमारी चॉकलेट हम खत्म कर देते थे उसी टाइम, बिकॉज हमारा रेनी डे उसी दिन होता था.
0: फिर नजर रेनी डे पे जाती थी.
2: एग्जैक्टली. तो फिर उसको जब पता लगता था कि हमने बाइट लिया है और हमने चुरा लिया उसकी, तो फिर वो आती थी हमसे लड़ने के लिए. फिर हम दोनों मिल जाते थे. मेरी बड़ी बहन उसको कहती, ठीक है तू 2 रुपए मेरे से ले ले लेकिन लड़ मत, शोर मत मचा. तो वो कहती थी 3 लूंगी. उसने कहा ठीक है तू 3 ले ले. पर वहीं पर सारा कुछ हमारा सेटल हो जाता था लेकिन हमें तो चॉकलेट मिल जाती थी भाई. तो ये होता था हमारे बचपन में. बट इट वॉज एब्सोल्युटली फन बिकॉज यू नो घर में ही सौदेबाजी चल रही होती थी. बट दैट्स कूल.
0: हाँ, तो हमारे फाइनेंशियल नॉलेज अभी तो वहीं से रही है ना.
2: Exactly.
0: कि ये सारी डीलें हमने क्रैक कर रखी है पहले से. हमारे पास वो एक्सपीरियंस है. हमें रिज्यूम में बदक भी डालना चाहिए. मतलब मैं और मेरा भाई तो डीलें हमारी ऐसी होती थी कि जब, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था तो हम लोग टीनेजर्स भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही थे. तो अब मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आना है और उसकी गर्लफ्रेंड का आना है तो हमने डील अपनी वो जो होती है ना ट्रीटी साइन कर रखी थी. Exactly. तू मेरी हेल्प करेगा, मैं तेरी हेल्प करूंगी और एक दूसरे के सीक्रेट हम रिवील नहीं करेंगे.
2: बिल्कुल. और यही सौदेबाजी से करते करते हम बड़े हो गए. लेकिन कोई मजाल है बाहर का अंदर घुसे. अगर कोई बाहर का अंदर घुस जाए तो भैया नहीं, तू नहीं रह सकता. लेकिन हम एक दूसरे की जान ले लें वो अलाउड है. ओके,
0: वो अलाउड है.
2: और हमारे माँ बाप, ओ माई गॉड, एंड नो पन इंटेंडेड, माई डैड यूज टू से एक ही घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान पैदा हो गया है.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: लोगों को कुछ भी बेचा जा रहा है और लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, लाइक एनीथिंग, एंड दिस गाय प्रूव्ड इट.
1: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फंकीएस्ट एंड द फनीएस्ट एवर. मस्ती मैडनेस विद रेणुका.
2: मस्ती मैडनेस, दिस इज रेणुका एंड अंतारा. इट्स रक्षाबंधन एंड ऑफ कोर्स अंतारा, क्या खबर लाई हो तुम?
0: आपको याद है कि एक इन वन ऑफ द राउंडअप्स वी एक्चुअली सेड दिस न्यूज कि सबसे ज्यादा यूट्यूब पे इस वीडियो को जो है व्यूज मिले जहां पे सिर्फ एक अंडा रखा हुआ था, एंड घंटों घंटों वो सिर्फ एक अंडा ही रखा हुआ है.
2: यस,
0: एंड आई डोंट नो व्हाट पीपल वर वाचिंग, बट इट हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ व्यूज दैट वन वीडियो.
2: दैट्स
0: सो यू रियली डोंट नो व्हाट इज वर्किंग विद पीपल एक्चुअली. सो दिस गाय ओके स्टार्टेड एक इंस्टाग्राम का चैनल एंड अपना वीडियोस अपलोड कर रहा है, अपना फेस जो है कवर्ड विद अ मास्क, एंड रोज repeatedly he is claiming that he would reveal something crazy August 25th 2026. Now just before D-Day, like na taza khabar hai, just before final day isne ek telegram ka link share kiya claiming that Instagram jo hai wo delete karne wala hai mera video which he was going to upload. So he asked all these people to come join his telegram channel instead. And he charged them 500 rupees also to join.
2: Oh, acha.
0: Almost 1.6 lakh people, very intelligent people, they paid. Which means, मुद्दा लगा 8 करोड़ रुपए कमा लिए बंदे ने बैठे बैठे. And guess what he uploaded 26th of August को.
2: What did he upload?
0: A video saying, don't waste your time, time won't come back.
2: मेरा बस चले, मैं इस इंसान का खून पी जाऊं. ऐसे कहते हैं दुनिया भर का वेल बना देना इन नो टाइम. कितना इजी है लोगों का बुद्धू बनाना, सीरियसली इमोशंस के साथ खेल के. हाय राम, हम क्यों नहीं कर सकते.
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अंतरा, देर आर सम पीपल, आप कई बार जब बात करते हो ना, आपका मन करता है कि या तो मैं इनके घर में मक्खी बन के बैठ जाऊं और इनकी सारी की सारी बातें सुनूं, या फिर मैं इस इंसान के दिमाग में इसी टाइम घुस जाऊं और मुझे पता लग जाए कि ये सोच कर रहा है मेरे बारे में।
1: Setting the perfect hot temperature.
0: और सिर्फ इसीलिए मुझे 20th सितंबर को सुहानी शाह के शो पर जरूर जाना है।
2: हालांकि मैं खुद नहीं चाहती कि वो मेरा दिमाग रीड करे, हैं? But I'm very curious,
0: है ना?
2: How she does that.
0: But she can, she's amazing. मतलब मैं देख रही हूँ कि वो ऑडियंस में बैठे बैठे एक इंसान से सिर्फ इतना पूछा, उसने चार पीछे मूवीज के नाम लिखे हुए हैं और वो कह रही है कि पिक अ मूवी, तो वो आदमी ना कि हाँ हाँ ये बताएगी मेरे दिमाग में क्या
2: है। भाई MBBS वाला
0: exactly.
2: रहा
0: है। So he says, मुन्ना भाई, and then he says, क्या मैं बता दूं आपको? She says, हाँ हाँ बता दो, and he says, मुन्ना भाई, and then she says, I knew it. अब मतलब इसमें क्या जादू है? Then people said, नहीं नहीं ऐसे कैसे, यू न्यू इट बोल दिया तो हम थोड़े मान जाएंगे। शी एक्चुअली गोज बैक टू द मुन्ना भाई का पोस्टर और उसके पीछे लिखा हुआ है यू विल पिक मुन्ना भाई। उसके बाद लोगों ने चैलेंज किया कि साथ वाले पे भी यही लिखा होगा तुमने, यू विल पिक दिस वन। उसने बाकी के दिखाए, उसके पीछे लिखा था ही विल पिक मुन्ना भाई। मतलब उसको पहले से पता था कि वो उस आदमी से पूछने वाली है, वो रैंडम सा ऑडियंस में कोई बैठा हुआ है, वो उससे पूछेगी और वो यही पिक करेगा। आखिर क्यों? एंड हाउ डज शी नो अबाउट इट इन एडवांस, राइट? एंड दिस इज जस्ट अ वेरी सिली एग्जांपल, माय गॉड, शी कैन मेसमराइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाए ना जाए, अगर आपको लगता है आप बड़ी चीजें देखी हमने, ऐसे अपने बच्चों को लेकर जाओ, सिखाओ कि क्या होता है मेंटलिस्ट और क्या होता है दिमाग लगा के ऐसे जादू करना, राइट?
2: बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए रेणुका सुहानी शाह को, एंड यू हैव टू गो लाइव एंड विटनेस एंड जस्ट कैसे होता है अनफोल्ड एवरी सिंगल थिंग, तभी जाके मजा आएगा। सो 20th ऑफ सितंबर संडे की शाम 6 बजे क्रेटा एयर पीपल्स थिएटर, सिस्टिक पर जाओ और बुक कर लो अपनी टिकटे।
0: परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाने बजाने वाले शोज होते हैं ना यार, ये तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, कॉन्सर्ट्स आते हैं, आई नो यू लव योर सिंगर्स, यू लव ऑल दैट, लेकिन एक मेंटलिस्ट का शो, वो भी इंडिया की वर्ल्ड रिनाउंड मेंटलिस्ट का शो देखना, ये मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई टोटली विल गो फॉर दैट एनी डे ओवर एनी अदर कॉन्सर्ट। सो गाइज, गो एंड गेट योर टिकट्स ऑन सिस्टिक, ओनली $69 ऑनवर्ड्स, एंड लुक आउट फॉर द कॉन्टेस्ट। अगर कॉन्टेस्ट के बारे में पूछना है तो हमें लिख दो 9151896 3, एंड यू मे स्टैंड अ चांस टू विन अ टिकट। हेलो, TNC सप्लाई।
3: Aamir Khan wondered.
4: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
3: Salman Khan wanted answers.
5: Kaise kiya ye?
3: R. Madhavan said.
6: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
3: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 PM, Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 टिप टिप करते करते हम पहुंच गए हैं टिप ऑफ दिस आवर विच विल बी द एंड ऑफ आवर शो. जी हाँ, टिप टिप
1: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: मस्ती मैडनेस जो है ना दिमाग को बहुत अलग अलग जगह लेकर जाता है जब ऐसे ऐसे बातें होने लगती हैं यहाँ पर. But well, मैं ये कह रही थी बिफोर यू से एनीथिंग, मैंने ना अभी इस हफ्ते एक खबर दी थी, आई वाज लाइक कि एक बार तो रेणुका के साथ ये बात तो करनी करनी है.
0: बताओ,
2: हमारे मार्क भैया है ना, मार्क जकरबर्ग भैया.
0: हाँ जी, हाँ जी.
2: तो मार्क जकरबर्ग भैया ने जो है आयरलैंड में लिया है एक कासल.
0: अच्छा,
2: है ना. तो अब खास बात यह है कि कासल एक तो बहुत लाइक कासल है, बहुत ही बड़ा है.
0: ठीक है, ठीक है.
2: तो उनका जो डाइनिंग हॉल से किचन जो है 4.5 मिनट तक चलना पड़ता है, तब जाके वो किचन पहुंचते हैं.
0: खाना ही ठंडा हो जाएगा. मैंने तो इसीलिए नहीं लिया इतना बड़ा, नहीं तो हाँ नहीं तो मतलब कासल वासल ठीक है, बट द पॉइंट इज कि यार तुम्हें कुछ चाहिए भाई, पानी ला दे, खांसी आ रही है, तब तक तो मर ही जाएगा आदमी. 4.5 मिनट में वो जाएगा, 4.5 में आएगा, 9 मिनट में बंदा बन गया.
2: हाँ, this is the difference. That is why Renuka is rich and I am not. This is what I wanted to prove to everybody. Because right now what she said, कि देखिए यार मैं पानी मंगाऊंगी तो वो 4.5 मिनट तक लेकर आएगा. You know what I said? कि यार खाने को बैठी, अचार चाहिए, अब 4.5 मिनट तक चल के जाना पड़ेगा अचार लाने. And then I was suddenly realized कि जब मैं इतनी अमीर होंगी तो मुझे क्यों चलना पड़ेगा, मेरे लिए तो लोग आ ही सकते हैं ना.
0: सोच बदलो देश बदलेगा. ये आदमी इस गाने में जुत्ती क्यों मांगता है? खुद को मारने के लिए नहीं. ठीक है, हमेशा जब इतने ज्यादा पैसे होते हैं और तुम किसी को बोलते हो कुछ ला दे तो वो किसी और के लिए भी हो सकता है. रियली
2: भाई लोगों,
0: कासर में बैठी है
2: अमीर लोगों की, सुनो ये होती है निशानियां, है ना, ये है असली अमीर.
0: कासर में बैठी है, खाना खा रही है, एक तो अचार ही याद आया इसको, अचार मंगवा रही है और ऊपर से मंगवा भी नहीं रही, खुद लेने जा रही है. तो बहन तू कैसल क्या

0: ताला।
1: ऑलराइट, तो भाई अभी ये वाली खबर दिमाग में आ चुकी है तो ये देख ही मैं जाऊंगी, क्योंकि पिछली बार तो इनके कैसल और इनके अचार ने ही हमको रोक दिया था। तो वेल, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाते ही आप लेटे हुए हैं डॉक्टर की टेबल पे, ठीक है, और फिर आप मुड़ के देखें कि डॉक्टर आ नहीं रहा, तो देखा कि भैया डॉक्टर तो एक यूट्यूब वीडियो देख रहा है, जो प्रोसीजर उसको तुम पे करना है उसका वीडियो देख रहा है वो, तो आपकी क्या रिएक्शन होगा?
2: Setting the perfect hot temperature for fraud.
3: यार ये बहुत स्कैरी है, ये तो बहुत ही स्कैरी लगता है। हाँ, पैसा खर्च करके, भरोसा करके, इन्वेस्टमेंट इतनी सारी डाल रखी है और डॉक्टर वहाँ यूट्यूब वीडियो देख रहा है कि इसका करना क्या है।
1: एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एक इंसान ने एक वीडियो डाला है जो कि काफी वायरल हो चुका है, यूट्यूब का मेडिकल ट्यूटोरियल चल रहा है पीछे, और जो डॉक्टर है वो हेडसेट लगा के अपने स्क्रीन पे देख रहा है और वो पेशेंट लेटा हुआ है। ओके, सो वेल ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो गया, भाई तुझे आता नहीं है, चल कर आए ये तो बता दे, है ना। सो ऑब्वियसली बड़े सारे लोगों ने जब ये वीडियो देखा उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, लेकिन जो कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस वीडियो को देख के कहा कि समटाइम्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमेशा इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं मिड ट्रीटमेंट, अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता है तो वो ऐसा देख लेते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट की जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मेरी फीलिंग ऐसी है कि भाई तू पहले देख के रखना, अगर तेरे को रिविजन चाहिए भी पेशेंट के सामने तो ना देख, ये तो मैं देख के ना कर लूँ फिर अपना।
3: I say too much information, like इतना how much rich is too rich, like too much information जब आ जाती है, मतलब पहले थोड़ी ना इस तरह के बीच में अलाउड होता था कि डॉक्टर बैठ के चेक कर रहा है कि नहीं ये वाला जो सुई है इसे घुसाना कहीं और से घुसाना एक चेक करते तो
1: नहीं, और पेशेंट भी बैठ के वीडियो नहीं ले रहा होता था, मतलब अगर तू बीमार है तो तू बीमार रहे ना यार। हाँ,
3: मेरा तो हार्ट पता नहीं दूसरी चीज अगर हार्ट अटैक पहले आ जाए देख के कि भाई ये क्या कर रहा है।
1: तो बस यही हुआ इस इंसान की, घबराहट के मारे उसने वीडियो ले लिया और वीडियो उसने पोस्ट कर दिया, पोस्ट हो गया वायरल, फिर डॉक्टर्स एक साइड हो गए, पेशेंट एक साइड हो गए और उन दोनों की चल रही है यहाँ पर लड़ाई, और हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें भाई घरों में देखना है कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, बुआएं जो हैं उन्होंने शुरू कराई हैं कि नहीं कराई अभी तक, आधा दिन होने को आया और मतलब लड़ाइयाँ हो जानी चाहिए अब तक, तो रोती हुई ना
3: नहीं शुरू है, अभी तो शुरू है, अभी तो राउंडे शुरू होंगी ना, तो वो राउंड बाय राउंड होगा।
4: मैं अपने भरा दे गल साल च एक बारी आंदियां ते मैनू इस तरह कर दिया है, ते भाभी बोले तुसी क्लेश ना पाया करो मेरे घर आके।
1: हैप्पी रक्षाबंधन गाइस,
3: हैप्पी रक्षाबंधन गाइस।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.
3: Hua musafir,

मैं क्या काका जी, तुसी इंडिया दी हो।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live pe. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
0: रात अकेली है तो क्या, हम

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैन हैटन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: बब्बे पो 80-90 पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो
1: रात अकेली है
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आपके

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your